0: हॉट कड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बट कड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बट कड़ाही, 820 किंगस्टन रोड, पिकरिंग, 905-839-0002।
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.

0: नहीं नून लीग को दी है गवर्नरशिप वहां पे, गवर्नर नून लीग का, डिप्टी स्पीकर नून लीग का, कायदे इख्तलाफ नून लीग का, बाकी चीजें जो है वो ये
1: जी वो मिल बांट के है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि वो मिल बांट के सबको
0: चले। अच्छा सर, वीगो डाले के साथ ख्वाजा साहब ने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि देखा जाए कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और क्यों हैं, वज़ीर-ए-आला ड्यूटी के बाद क्यों गाड़ियों पर झंडा लगाते हैं, घूम के फिरते रहते हैं, ये उन्होंने सवाल किया है। ख्वाजा साहब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, क्या पार्लियामेंट से जाने की ख्वाहिशमंद हैं वो, ये क्या मसला?
1: जी देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जो पार्लियामेंट के अंदर वो खिताब कर रहे थे, खिताब के दौरान कुछ उन्होंने तहफ्फुज़ात का उन्होंने इजहार किया है। अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली ख्वाजा आसिफ के जो बयान हैं वो बड़े, मतलब ये कि थोड़ा सा आप कह लें कि उनके मनसब से, उनकी पार्टी पोजिशन से जो है वो काफ़ी हट के वो बयान दे रहे हैं। जहाँ हमारा आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने वीगो डाले का जो है ना वो जिक्र किया, उन्होंने खुद भी कहा कि यहाँ पे जैसे ही आप उस गाड़ी के अंदर जो है ना वो बैठते हैं आपका दिमाग जो है ना वो खराब हो जाता है, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक ताकत की अलामत जो है ना उसको समझा जाता है। और उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ ने कि हमें इस बात को समझना चाहिए सियासतदानों को कि जब हम इक्तदार में होते हैं तो पुलिस की गाड़ियां हमारे आगे होती हैं, और जब हम इक्तदार से हट जाते हैं तो वही गाड़ियां हमारे जो है ना वो पीछे होती हैं हमें गिरफ्तार करने के लिए। तो बात तो खैर उन्होंने बिल्कुल मतलब के मुनासिब की है और ठीक की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे सियासतदान इस बात को समझने के लिए जो है ना वो तैयार नहीं है। हर जो पार्टी जिसकी हुकूमत जो है ना वो आती है, हुकूमत बनती है, अभी आप देख लें एक बयान जो है वो बड़ा गर्दिश कर रहा है जिसमें बैरिस्टर गौहर जो है वो पीपल्स पार्टी वालों को जो है ना वो मतलब के ललकार के कह लें या उनको बड़ा मतलब के वाजह तौर पर जो है ना ये बात पूछ रहे हैं कि जब यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने फैसला किया था, क्योंकि जो बैरिस्टर गौहर है वो खुद भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा जो है ना वो रह चुके हुए हैं और बिल्कुल उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी जो है ना वो हिस्सा थे, तो कहा कि फैसला हुआ था कि मखदूम शहाबुद्दीन को वजीर आजम बनाया जाएगा, सीईसी ने यह फैसला किया था, और उसके बाद चंद लोग जो है ना वो उनके घर जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है और कहीं से ये फैसला जो है मुसल्लत किया जाता है या कहा जाता है कि राजा परवेज अशरफ जो है उनको वजीर आजम बनाया जाए, और वही जो है ना वो फैसला फिर हम देखते हैं कि जो है ना वो आगे भी होता है। तो ये मतलब ये शो करता है कि हमारे यहाँ पे सियासी जमातें जो हैं वो उनकी कुल हैसियत जो है ना वो कितनी है, बताया ये जाता है कि जमहूरियत है, अवाम की ताकत है, अवाम ताकत का सरचश्मा है, और ये जो हमारी सियासी जमातें हैं ये अवाम को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन जब इस तरह के मामला जो है वो निकल के सामने आते हैं और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग या दूसरे जो है ना बैरिस्टर गौहर और पीपल्स पार्टी के लोग जब ये वहां पे असेंबली के अंदर खड़े होकर इस तरह की बातें, अभी आप बिलावल भुट्टो के बयान को ही देख लें जिसका हमने जिक्र किया था कि उन्होंने जो है वो आजाद कश्मीर के हवाले से इंकशाफ किया कि उनकी भी सीटें जो है वो इसी तरीके से महाजरों की सीटों का इस्तेमाल करके पीटीआई की हुकूमत जो है वो वहां पे बनाई गई थी। तो इस तरह के जो इंकशाफात हैं वो मुल्क में जो जो है ना वो सिस्टम जो है जो चल रहा है उसको मजीद अयां करते हैं और सियासी जमातों को जो किरदार है उसको वो डाउन प्ले करते हैं।
0: रमेश कुमार साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के MNA हैं, यहाँ भी आए हुए थे पिछले दिनों, से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि चार पांच लोग होते हैं, कहते मुझे कहा गया कि आप छोड़ के इधर शामिल हुए तो मैंने खुद कहा था इमरान खान साहब को कि आप जो हैं आपकी हुकूमत जाने वाली है, मतलब वो मतलब यहाँ तक लोग खुद कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि यहाँ छोड़ के यहाँ आ जाएं, तब अब किसके ऊपर फिर बाद में क्या बात करें। चलें अच्छा सर, बलोच एकियती कमेटी की रहनुमा मारंग बलोच और सिप्तुल्ला को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, सजा बलुचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुनाई है। अब आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र मारंग बलोच के फैसले के वक्त पर सवाल निशान है, मैसेजिंग है ये कि भाई इस तरह अगर होगा तो फिर इस तरह होगा या ये उल्टा पड़ेगा?
1: जी देखिए बिल्कुल, मतलब ये कि आप देख लेना कि ये कोई किस्सा जो है ना वो आज का तो नहीं है। मारंग बलोच को जो है गिरफ्तार हुए साल से ऊपर जो है वो हो चुका है और कब से ही जो है ना ये मामला चल रहा है, तो एंड इस वक्त के ऊपर आके सजा का सुनाना, गो के दोनों सूबों के मामला जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, जो वहां पे जो ये इनकी थी मारंग बलोच की जो बलोच यकजहती कमेटी जो है उसके इशूज और हैं, उसका जो है ना मुतालबा कुछ और था, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि रियासत ने बचाए मामले को सॉल्व करने के बिल आखिर बहुत देर मतलब कि इन्होंने एहतजाज किए, बहुत देर इन्होंने पहले इस्लामाबाद के अंदर ही आके बैठे रहे, इनसे भी वही आप चाहें लेकिन सिमिलर सिचुएशन थी कि मुजाकरात होते रहे, सियासी जमातों ने इनको एंगेज करने की कोशिश की, मुजाकरात के बावजूद मैं मतलब कि यहाँ पे जो है ना ये वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये बात जो है वो यहाँ पे बावर करवानी पड़ेगी कि जो उनके साथ कमिटमेंट की जाती है सियासी जमातों की जानिब से उसको पूरा नहीं किया जाता। वो फिर जो है वो वापस गए बलोचिस्तान गए, वहां पे जाके उन्होंने फिर जो है ना वो एहतजाज किए, वही बातें, यदि हमसे जो वादे इस्लामाबाद

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
3: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
3: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स, पर इस यादगार

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको, नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com।
3: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी, और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
4: It's P on the track. Let's go.

0: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफरोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
6: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
7: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

Tie your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट माई मैकेनिक ऑटो.ca।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर पेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210।
3: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: Another Dawn clean with the Dawn Dux.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार। ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
7: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी अनयूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स और कॉल 416-746-3795 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर इट डिजर्व्स।
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता, हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी। अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर टॉप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी। ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी होगी, 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2,500 वाला $1,799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे। स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1,300-1,400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है। टॉल टब की डिशवाशर जो है $1,000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1,000 से सिर्फ $499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवाशर ले सकेंगे स्टेनलेस स्टील की $499 फ्री होम डिलीवरी के साथ। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी तो $2,200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1,700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1,099 का पेयर मिलेगा, वॉशर ड्रायर दोनों। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन पे आना है। हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को। ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
0: जी 905-450-2828, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।
2: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज कीजिए 2026 GV80 सिर्फ 3.9% से अप टू 39 मंथ्स तक। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue, End John Street, Markham. We speak your language. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
3: अंधे को मंदिर आया देख, लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए तो आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं दोस्तों, दृष्टिकोण सही होना चाहिए।
4: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940, 647-863-1940.
5: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
2: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markhamberg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 647-863-1940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शिवानी आपके साथ और रेडियो टोरंटो कनाडा के आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो में आमिर और शिवानी की तरफ से गुड इवनिंग आप सभी को। और गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s और सुपर डुपर हिट मेलोडीज के साथ चलता है ये सफर आपके और हमारे साथ साथ। नंबर यही रहता है 416-303-3639। आज के शो में भी तो तमाम गाने शामिल रहेंगे जो आपके दिल के करीब हैं, जो आप हमेशा सुनना चाहते हैं, द हमेबल सॉन्ग्स, द हिट सॉन्ग्स। और इसी के साथ हमारे स्पॉन्सर्स के बेहतरीन मैसेजेस के साथ भी ये सजा धजा रहेगा आज का शो। और आज एक स्पेशल लाइव ऑन लोकेशन के तहत हम आपसे रूबरू होंगे, बहुत सारी स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और कहते हैं ना कि कभी कभी यूं ही चले आया करो दिल की दहलीज पर, कभी कभी यूं ही चले आया करो दिल की दहलीज पर, अच्छा लगता है यूं तन्हाइयों में तुम्हारा दस्तक देना।

0: आज के चार मिनट का वक्त है साडी गली, और एक गली जो है आपको आज जाना है, और वो जो गली है वहाँ पे आमिर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और नंबर आप याद रखिए 4372643175। बेहतरीन और अच्छी क्वांटिटी वाली ग्रैंड्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। आमिर, वेलकम करते हैं आपका। कैसे हैं आप, क्या चल रहा है वहाँ पर?
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, और मैं आपको बता दूं मैं कहाँ हूँ। सबसे पहले तो इस राज पर से पर्दा हटाया जाए, मैं इस वक्त यूनी ग्लोबल एडवाइजरी के ऑफिस में मौजूद हूँ, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड मिसिसागा। यहीं आपको पहुंचना है, और आज यहां पहुंचने की वजह बहुत खास है कि मैंने बड़ी मुश्किल से जो सीईओ है कंपनी के उनको इस बात के लिए राजी किया है कि जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है तकरीबन $400 के करीब बनती है, आज की तारीख में, आज की डेट में जो लोग इनरोल कराएंगे ग्रांट लेने के लिए, फंडिंग लेने के लिए, उनको $400 की वो फीस माफ कर दी जाएगी, वेव ऑफ कर दी जाएगी, उनको ये डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो इट्स सेविंग $400, एक बात। नंबर टू, अगर आप फैमिली ऑफ टू हैं, फैमिली ऑफ थ्री या फोर हैं, तो फंडिंग $70,000 से $1,00,000 तक मिल सकती है। आज जहां भी हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, घर में हमें सुन रहे हैं, किसी ट्रक में सुन रहे हैं, डिलीवरी ड्राइवर हैं आप, उबर में सुन रहे हैं, कहीं भी यू आर ट्यूनिंग अस इन, यहां पहुंचिए 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, क्योंकि यहां एक तो $400 की फीस मुकम्मल तौर पर आपको माफ कर दी जाएगी। यू डू नॉट हैव टू पे anything, not a single penny. मैंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, इनको आमादा किया इस बात के लिए कि ये जो इंतजामी अमूर की फीस है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फी है उसको वेव ऑफ कर दें, मुकम्मल तौर पर उसकी छूट दे दें। नंबर ये मिलाएंगे फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए 4372643175। नंबर मैं दोबारा बता रहा हूं, एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पहुंचना है मिसिसागा में, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, दोबारा बता रहा हूं एड्रेस, यहां पहुंचिए, $70,000 से $1,00,000 तक की ग्रांट अवेलेबल है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो ये फीस लेते थे $400 वो भी आज छुड़वा दिया। आज की डेट में जो लोग भी इनरोल करेंगे ये $400 ऑन टॉप ऑफ दैट बचा लेंगे। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 4372643175। और नागपाल जी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। नागपाल जी, वेलकम टू द प्रोग्राम।
2: थैंक यू वेरी मच जी। एंड देन आप मान के चले, जैसे अभी मैं ऑफिस आ रहा था
1: जी,
2: आज गैस प्राइस सस्ता लगा हुआ है
1: जी,
2: दूर तक लाइन लगी पड़ी
1: है। यस।
2: तो जब हम 5 सेंट ये मान ले $3 बचाने के लिए एक घंटा वेट कर सकते हैं, तो जब गवर्नमेंट फंडेड आप एजुकेशन प्रोग्राम करके गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है, आपके खाते में, मेरे खाते में नहीं, कितनी, $30,000 से $100,000 डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज। अगर आपकी इनकम कम है, कम नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपने टैक्सेस खुद करते हैं, अनएम्प्लॉयड उबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर है, आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम $70,000 से कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, 2024 का भी गवर्नमेंट देख रही है, NOA अभी अकेडमी के चल रहा है 25-26, इसमें 24 का देख जाता है। तो आप इस फंडिंग को हासिल कर सकते हैं, आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन कोर्सेज करें, अपने घर के कम्फर्ट से करें आप आसान से कोर्सेज, तालीम भी हासिल करें, हुकूमत से फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें, जिसका आधा पोर्शन, अगर किसी की 80,000 बनती है ना फंडिंग
1: जी,
2: उसका आधा पोर्शन तो ग्रांट्स है।
1: वेरी नाइस।
2: 28 दिन में रूल चेंज होने वाले हैं,
1: बिल्कुल,
2: इसलिए आमिर जी को हमने आज यहाँ इन्वाइट करा है। 28 डेज में रूल चेंज, गवर्नमेंट ग्रांट में कट कर रही है, फंडिंग इज सेम, बट आएगा लोन, क्या करोगे लोन लेके, तो पहली बार पे इतनी,
1: बिल्कुल सही बात है, दैट्स वेरी ट्रू। ग्रांट ले लीजिए, ग्रांट वो पैसा है जो वापस नहीं करना है, याद रखिए, आज फोन करेंगे $400 और बचा लेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, और $70,000 से $1,00,000 तक की फंडिंग मिल सकती है, और आधी
3: इसमें से ग्रांट है, मान लीजिए 40-50 हजार ग्रांट का मिल गया जो आपको नहीं लौटाना है, तो ये आपको 2 साल आगे ले जाएगा। लोग 2-3 साल पीछे जा रहे हैं फाइनेंशियल सेटबैक की वजह से। आजकल आपको ये ग्रांट मिल गई, 2-3 साल का किचन का खर्चा तो निकल जाएगा आपका, बैक होम बेच सकते हैं, यहाँ खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत से काम ले सकते हैं 40-50 हजार से आज के टाइम पे। ये रहा नंबर, एक बार फिर से बता रहे हैं, 437-264-3175। आप यहां आके इनरोलमेंट कराएं या फोन के जरिए इनरोलमेंट कराएं। जो आज की डेट में इनरोलमेंट कराएंगे उनका $400 वेव ऑफ कर दिया जाएगा। नागपाल जी से मैंने बड़ी मुश्किल से ये $400 की छूट ली है, सिर्फ अपने सुनने वालों के लिए। नंबर दोबारा बता रहे हैं, ये नंबर डायल कीजिए, ग्रांट लीजिए, 437-264-3175। नंबर अगेन, 437-264-3175। आज बहुत से ऐसे लोगों से भी बात होगी जिनको ग्रांट मिल चुकी है, मेरे साथ यहां मौजूद हैं। इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम वी विल स्पीक टू देम, विल कीप यू अपडेटेड। आते रहिए और इस ऑफर से फायदा उठाते रहिए। ओवर टू यू शिवानी।
0: थैंक यू सो मच। कहते हैं, लब पे तेरे इकरार मोहब्बत शेर गजल का लगता है, शर्म से चेहरा लाल गुलाबी फूल कमल का लगता है, दिल को नजर से टकराए भी एक जमाना बीत गया, चोट मगर है इतनी ताज़ा हाथ सा कल का लगता है, बेखुद होकर मस्त हवाएं ऐसे कब इतराती थी, बेखुद होकर मस्त हवाएं ऐसे कब लहराती थी, ये जादू तो हल्का हल्का उस आंचल का लगता है, हम समझे थे भूल गए हैं वो चाहत का अफसाना, आज मगर फिर दर्द सा दिल में हल्का हल्का लगता है, लब पे तेरे इकरार मोहब्बत शेर गजल का लगता है, आज मगर फिर दर्द सा दिल में हल्का हल्का लगता है।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584।
0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वॉप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा, वक्त हो चला है 2:16 और वक्त हो चला है हमारे मेहमान से आपको मिलाने का। दोस्तों, दिल के बारे में कहा जाता है, क्योंकि दिल आज आने वाले गाने हम प्ले करते हैं यहाँ पर आपके लिए, कि दिल का क्या है कहीं भी लग जाता है, दिल का क्या है कहीं भी लग जाता है, तबाह तो ये तब होता है जब कहीं ठहर जाता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमारे जाने पहचाने मेहमान हमसे बातचीत करने वाले हैं ना, वहाँ आपका दिल ठहर भी जाएगा और आपका दिल आपसे चीख चीख कर बोलेगा कि हमें यहाँ बस जाना है। तो कौन सा ये प्रोजेक्ट है, आइए मुलाकात करते हैं। जाना पहचाना नाम है, हम सब के अजीज हैं और जनक छापरा जी जॉइनिंग अस नाउ ऑन रेडियो टोरंटो कैनेडा। जनक जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
5: गुड आफ्टरनून शिवानी जी, नमस्ते, क्या हाल है आपके?
1: नमस्ते जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और बिल्कुल दिल आ जाए ऐसा प्रोजेक्ट है आपका।
5: मैंने सही नाम लिया आज,
1: है ना? आज सही नाम लिया आपने। लास्ट टाइम लगाने की आज जरूरत नहीं पड़ी।
5: सबसे पहले आपके प्यारे लिसनर्स को आदाब, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते
1: जी,
5: और आप और आपकी टीम को विशेष। शालिनी जी, सॉरी शिवानी जी।
1: हाँ जी,
5: ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसने धूम मचा रखी है।
1: बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
5: ये मेफील्ड और गोर रोड पर आया है प्रोजेक्ट।
1: हॉटेस्ट लोकेशन, बिल्कुल
5: हॉटेस्ट लोकेशन, ईस्ट ऑफ कैलिडन। मेफील्ड और गोर रोड पे ये मास्टर प्लान कम्युनिटी है
1: जी।
5: सोलमार डेवलपर हैं जो पिछले 36 सालों से हजारों मकान बना के बहुत सारी कम्युनिटियां सक्सेसफुल तरीके से डिलीवर कर चुके हैं
1: जी।
5: टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें इन्होंने एक एक चीज बारीकी से ध्यान रखी है साउथ इंडियन कम्युनिटी को सोचते हुए। उन्होंने मेन फ्लोर पे एक बेडरूम का प्रोविजन भी रखा है पेरेंट्स के लिए।
1: अच्छा,
5: ताकि उनको ऊपर जाने आने में ज्यादा तकलीफ ना हो, सीनियर्स होते हैं
1: जी। बिल्कुल,
5: और हमारे को पता है कि ज्यादातर एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है साउथ इंडियन में
1: जी,
5: पेरेंट्स साथ ही होते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए होती है।
1: बिल्कुल सही।
5: तो डीटीएच इसमें आए 9 लाख के नंबरों में. सेमी जो बिल्डर बनाना बंद कर चुके हैं वो भी इन्होंने बनाए 8 लाख के नंबरों में
1: जी.
5: और टाउन हाउस फ्री होल्ड, कोई POTL नहीं, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं, कोई स्टैक टाउन नहीं, बड़े टाउन्स हैं विद डबल गैराजेस, 4 पार्किंग तक है, वो आपको फिर प्राइवेट बैकयार्ड मिल जाएंगे 7 लाख के नंबरों में.
1: क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग.
5: हाँ जी हाँ जी, ऐसा प्राइस मेरे को लगता नहीं काफी सालों में अलग आपने सुना होगा.
1: बहुत ये वंस अपॉन ए टाइम वाली प्राइस है जो पहले सुना करते थे कभी कभी, है ना.
5: हाँ जी, कोविड से बहुत पहले.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनबिलीवेबल.
5: तो, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है ये. 500 से ज्यादा लोग थे जिसे इन्होंने लॉन्च किया 17 तारीख को
1: जी.
5: 200 लॉट निकाले, 2500 बनने. बिल्डर पहले फेज में हमेशा प्राइस कम रखते हैं, फिर 20 से 50 हजार बढ़ा देते हैं.
1: वाओ जी,
5: ये सबको मालूम है, सारे इन्वेस्टर या इंडिविजुअल जो भी खरीदते हैं उनको पता है
1: जी.
5: प्री कंस्ट्रक्शन में पहले फेज में हमेशा पैसे कम होते हैं. जैसे एक जमाने में अंग्रेजों ने चाय फ्री बांटी थी, फिर बाद में दुनिया भर के पैसे.
1: सही है.
5: तो इसमें देखिए शिवानी जी, क्रिकेट का ग्राउंड है,
1: ओ वाओ,
5: टेनिस और बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं,
1: वाओ,
5: स्प्लैश पैड हैं, और बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेल है जो घूमने के शौकीन है, साइकिलिंग के शौकीन है
1: जी.
5: बहुत बड़ी ट्रेल है, हाईवे 413 5 मिनट पे, गो स्टेशन 5 मिनट पे, वो आ रहे हैं वहां पे. तो आज इसने ले लेना है, अगले साल इसकी क्लोजिंग है 1.5 साल के आसपास, सितंबर और अक्टूबर में वहां से शुरुआत है. तो उसको जब इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तैयार हो जाएगी तो उनकी प्राइस वैसे ही 1-2 लाख बढ़ ही जाएगी.
1: बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही
5: ना, क्योंकि ये फर्स्ट फेज है, ये सब आ रही है वहाँ चीजें
1: जी, जी.
5: मेफील्ड और गोरोड ईस्ट कैलिडन में
1: जी.
5: इसमें डिपॉजिट है 10%.
1: अच्छा,
5: 1 साल में देना है, छोटी छोटी किस्तों में देना.
1: अमेजिंग.
5: इसमें जो पहला डिपॉजिट है टाउन का वो है 10,000.
1: ठीक है.
5: और जो दूसरा टाउन डिटैच में डिपॉजिट है वो है 15,000. आप बहनों ने जो मेरे को प्रथा शुरू कराई थी इसमें मैं भी अपना योगदान डाल रहा हूँ, 25% मैं डालूंगा.
1: ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बहुत सुंदर.
5: किसी भाई ने सवेरे सवाल किया कि आपका नाम, मेरा नाम नहीं होगा भाई, आप ही का नाम होगा, आपको पूरे पैसों की रसीद देगा बिल्डर.
1: क्या बात है, बहुत अच्छा,
5: आपको
1: बहुत
5: देना
1: अच्छा.
5: 7,500 आपका 10,000 की रसीद मिलेगी बिल्डर के लॉयर्स के ट्रस्ट अकाउंट से
1: जी,
5: आप ही के नाम से
1: जी. जनक जी, ये सुनने के बाद तो मैं नंबर जरूर बताना चाहूंगी आपका, 6479990935. तो जनक जी, ये सारी चीज़ों के अपॉर्चुनिटी पे का फायदा उठाने के लिए इसी नंबर पे डायल किया जाए जिससे आप मिल जाए और उनको समझा सके.
5: हाँ जी बिल्कुल, 6479990935. टाइम की परवाह नहीं करनी आपने, सुबह रात दोपहर जब आपकी मर्जी फोन कर लें,
1: बहुत
5: आपको जवाब आएगा ही आएगा.
1: क्या बात,
5: बहुत बिजी हूँ लेकिन जवाब आएगा आपको हर वक्त.
1: बहुत खूब, ये तो आपकी स्पेशलिटी है, सबके लिए आप अवेलेबल रहते हैं, पता नहीं कैसे टाइम निकालते हैं. लगता है ऊपर वाले ने आपके खाते में 48 घंटे डाले हैं जनक जी, कुछ ना कुछ तो पार्शलिटी हुई है. 6479990935. जनक जी, हमारे लिसनर्स बेताब हैं आपसे बातचीत करने के लिए, और इतने अच्छे प्रोजेक्ट आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
5: बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो नाइस.
1: थैंक यू जी. और अब हमारे साथ आमिर जुड़ चुके हैं जो कि बहुत ही हॉटेस्ट लोकेशन पर हैं. कहते हैं कैदी हैं सभी यहाँ, कोई ख्वाबों का तो कोई ख्वाहिशों का. अगर आपके ख्वाब है कि आपको ग्रांट मिले, ख्वाहिशें हैं जो पूरी होनी है, तो आपको इसी जगह पर पहुंचना है. पूरी डिटेल्स के साथ आमिर, वेलकम करेंगे आपका, कैसे हैं?
6: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. एंड पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग टू दिस लोकेशन. आज की तारीख में, आज की डेट में जो लोग इनरोल कराएंगे, सबसे पहले वो $70,000 तक की फंडिंग ले सकते हैं. याद रखिए बहुत कम टाइम रह गया है, 28 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी चेंज हो रही हैं. द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी आप इनरोल करा लेंगे उतनी जल्दी आपको ग्रांट मिल जाएगी, क्योंकि दिस ग्रांट इज कन्वर्टिंग इनटू लोन वेरी वेरी सून. बहुत जल्द ये लोन में बदल जाएगी, और लोन तो पहले ही बहुत है हमारे ऊपर, इसलिए ये नंबर मिलाइए अभी के अभी. स्टाफ सारा बैठा है यहाँ पे, बहुत से लोग हैं जिनसे हम आपकी बात करवाएंगे, जिनको ग्रांट मिल चुकी है. ये 100% ट्रांसपेरेंट 100% जेन्युइन, 100% ओरिजिनल है। लोग ग्रांट ले रहे हैं, बहुत से ऐसे लोगों से भी बात करवाएंगे जिनको ग्रांट मिल चुकी है। नंबर ये मिलाएंगे आप 437-264-3175। आज की डेट में इनरोल कराएंगे, $400 बचाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। 437-264-3175। नागपाल है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चेंज हो रहा है बहुत जल्दी, ये लोन बन जाएगा जो ग्रांट है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आज की डेट में कोई खास पैगाम, कोई खास बात जो बताना चाहें सुनने वालों को।
7: हाँ जी, सो लाइक टाइम कम रह गया है, 28 दिन रह गए हैं, गवर्नमेंट उसके बाद पॉलिसी चेंज कर रही है। अगर लाइक आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे कम है, लाइक आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप उबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर है, अगर आपकी इनकम $70,000 से कम है, आपको सिर्फ तभी इसका एडवांटेज है, आप तभी हमें कॉल करें। आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, फुली ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, तालीम हासिल करते हैं, हुकूमत आपको फंडिंग देती है कि आप तालीम हासिल करते करते बच्चों को खाना दे पाए। तो आपको फंडिंग देती है $30,000-$100,000 की फंडिंग है, जिसका हाफ पोर्शन आज की डेट में तो ग्रांट है। एज लिमिट नहीं है, पेंशन का सभी एलिजिबल है, आप 40 ईयर्स के 50-60 साल के सभी एलिजिबल हैं। लास्ट 34 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गई, मेरे खाते में नहीं आई।
6: बिल्कुल सही,
7: ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट हो गया, आपका लाइक मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं आपके बच्चे तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्या हेराफेरी करेंगे इसमें आप, इसमें कोई झोल है ही नहीं,
6: है ही नहीं,
7: कोई
6: बिल्कुल सही,
7: कोई परसेंटेज नहीं है, और यही डॉक्यूमेंट्स आपके सिंपल से लगते हैं इसमें। अब गवर्नमेंट को आप डॉक्यूमेंट एडिट करके देंगे क्या?
6: नहीं देंगे।
7: तो ये से इसको कंफ्यूजन ना करें, ओरिजिनल काम है। आप तालीम हासिल करते हैं, हुकूमत फंडिंग आपको आपके खाते में देती है। आप 40-50 साल के, डजंट मैटर आपका क्रेडिट स्कोर जीरो भी है, डजंट मैटर, आपने 2-3 घंटे फुली ऑनलाइन आसान से कोर्स करने हैं, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है,
6: नहीं है,
7: बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। कॉल करें, ऑफिस आए, आमिर जी आज हमारे ऑफिस में है, हमारा 1,000 square feet का ऑफिस है, सर 7 बंदे काम कर रहे हैं
6: जी, बिल्कुल
7: बेड पे मॉडर्न पेनिंग मिलते, 8 साल हो गए हमें बिजनेस में, कोई कैच नहीं है, कोई हिडन चीज नहीं है। आमिर जी आपके पर्सनल कैपेसिटी कितने बंदों का?
6: बिल्कुल, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें हम जाती तौर पर जानते हैं, उन्हें हमने ये रास्ता दिखाया, आज उनके पास स्किल भी है और उनके पास पैसा भी है, दोनों तरह से वो फायदे में है। ये ग्रांट, ये फंडिंग आपके फायदे में है जी। अब हम बात करेंगे जरा फैमिली ऑफ टू की फंडिंग के ऊपर, कि फैमिली ऑफ टू है, फैमिली ऑफ थ्री है, फैमिली ऑफ फोर है, फंडिंग में क्या फर्क पड़ता है ज्यादा लोगों
7: के? अगर फैमिली ऑफ टू है, हस्बैंड वाइफ है, जैसे रिटायर्ड कपल मान लें, ये यंग कपल मान लें आप, उनमें से एक को ही करके फायदा होता है। जैसे वाइफ कर रही है तो उनको 45,000 की अप्रोक्सीमेट फंडिंग बनती है, जिसमें से $25,000 तो ग्रांट है,
6: तो
7: रेस्ट पैसा है $20,000 वो ऑप्शनल लोन है, जो कि 0% पे है, विदाउट क्रेडिट चेक, नो कोलैटरल, नो सिक्योरिटी की आपको फंडिंग मिलती है, नो कोलैटरल, नो सिक्योरिटी, और लाइक इसमें क्रेडिट चेक भी नहीं होता। तो 45,000 आया, उसमें से क्या कहते हैं 25,000 ग्रांट है, कॉलेज की फीस 11,000 से ली गई,
6: बिल्कुल
7: ठीक, ऑन कोर्स
6: जी,
7: तो आपको ग्रांट का मिलने 14,000 बच गया
6: जी,
7: लोन का 17,000 से 20,000 बच गया, आपके खाते में 32,000 से $37,000 था अगर के कहता है
6: 30-90 days
7: में।
6: वेरी नाइस।
7: अब आ जाए, आपके 3 बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, ये देखिए आज ही पैदा हुए हैं
6: जी जी
1: जी,
7: 300 तो फैमिली पाई होगी
6: जी,
7: तो अब तो 100,000 की फंडिंग बनती है।
6: वेरी नाइस।
7: इसमें भाई दोनों पढ़ रहे हैं और 100,000 मिलता है, इसमें से $50,000 तो वापिस ही नहीं करना, वो ग्रांट है।
6: वेरी नाइस।
7: तो रेस्ट $50,000 है जो की 1 साल तक 0% पे है, 1.5 साल बाद जब बताना स्टार्ट करेंगे तब वो 2.5% के ब्याज पे, मतलब 50,000 जो ऑप्शनल लोन मिला आपको, लोन मिला 50,000 का ऑप्शनल है, जो लोन करते ना लीजिए जी, लेकिन 50,000 वापस करना, सिर्फ $5,000 ब्याज है 50,000 को 10 साल के लिए।
6: देखिए $1,00,000 तक भी आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली साइज, $1,00,000 तक की रकम भी मिल सकती है, जिसमें तकरीबन आधी ग्रांट है जो आपको वापस नहीं करनी, और आधा लोन है जो स्टडी खत्म होने के 2 साल बाद आप लौटाना शुरू करेंगे आसान किस्तों के ऊपर। ये रहेगा नंबर, ये मिलाएंगे 437-264-3175। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, आज की डेट में जो लोग इनरोल करेंगे आज की डेट में उनके लिए $400 की छूट है। मैंने नागपाल जी से स्पेशल गुजारिश की, मेरे लिए बहुत मुश्किल था इनको मनाना, लेकिन ये इनसे बात करने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचे कि आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं $400 के, वो ये चार्जेस नहीं लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, आपकी इनरोलमेंट करेंगे। यहाँ पे इनका स्टाफ मौजूद है, 7 बंदे मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको ग्रांट मिल चुकी है और वो अगले साल के लिए और ग्रांट के लिए अप्लाई करने आए हैं। पहले साल की मिल गई है, अब दूसरे साल की अप्लाई करने आए हैं। नागपाल जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना हूँ कि अगर कोई बंदा 1 साल का कोर्स कर चुका है तो क्या दूसरे साल में और फंडिंग उसको मिल सकती?
8: बिल्कुल ऐसा है, और जो कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं,
9: करते जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक,
8: और वो औरों को बताते कम है। अब मैं कह रहा हूँ आप अपने 5 दोस्तों को फोन लगाएं जो हमारा शो, 3 ने ऑलरेडी फंडिंग ले ली होगी,
9: सही,
8: 2 ने हमारे थ्रू ली होगी, जरिए आए हम,
9: बिल्कुल
8: फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, बाकी लगते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं बता दें आपसे दूर बोल रहे
6: हैं। बिल्कुल ठीक, यहाँ नंबर है, ये नंबर मिलाइए, आज इनरोल कराइए, टाइम बहुत कम रह गया है, ये नंबर मिलाएंगे आप, यहाँ रहा नंबर 437-264-3175, या फिर यहां पर आ सकते हैं आप 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड मिसिसागा, हम यहीं पे हैं, ये रहा नंबर एक बार फिर से 437-264-3175.
1: Over to you, Shivani. Thank you so much. और दोस्तों, अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है मैथ में या फिर हायर ग्रेड्स के लिए आप होपफुल हैं और यू नो सपने देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए, स्ट्रॉन्गर कॉन्फिडेंस जनरेट करें, आपका बच्चा स्टेम प्रोग्राम्स में सक्सेस हासिल करे, तो बस एक ही नाम याद रखिएगा, काम हो जाएगा। वो नाम है अनिल कुमार खंडेलवाल, एक जाना पहचाना नाम है, जीनियस है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के एडुकेटर हैं, 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, यूट्यूब चैनल में 18,000 से ज़्यादा इनको देखा गया है और इनके मैथ वीडियोस हैं, और 18,000 से ज़्यादा इनके मैथ वीडियोस हैं, 400,000 यानी 400,000 इनके सब्सक्राइबर हैं, ह्यूज डिफरेंस ला सकती है इनकी गाइडेंस आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चे की जिंदगी में। और अनिल कुमार जी की जो यूनिक अप्रोच है, वो जो फोकस करती है हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, नॉट जस्ट मेमोराइज फॉर्मूलाज, ये तो बड़ा आसान है और ये कोई भी कर सकता है, इससे सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और उनका जो तरीका है वो हर बच्चे के लिए अलग है, कस्टम मेड प्लान्स आपके लिए लेकर आते हैं, तरीका लेकर आते हैं, एवरी चाइल्ड कैन सक्सीड इन मैथ विद द राइट सपोर्ट एंड गाइडेंस। नंबर टू कॉल 647-979-2791। अनिल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून।
10: वेरी गुड आफ्टरनून शिवानी जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक्स फॉर अ ग्रेट इंट्रोडक्शन।
1: प्लेजर।
10: आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार। तो, जी
10: जैसे शिवानी जी ने कहा कि हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, और इसके साथ हमने ये सीखा है कि कैसे हम अपने बच्चों को बहुत सक्सेसफुल कर सकते हैं। हमारे बच्चे क्लास में अक्सर फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, 95% के करीब उनके नंबर भी आते हैं, और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है स्कॉलरशिप के साथ। स्टेम शुलेक अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है टोरंटो के अंदर, वो भी मेरे स्टूडेंट ने पाया है, जिसको एक टाइम पे हेल्प की जरूरत थी
1: जी।
10: तो आप देखिए किस तरीके से हम हर बच्चे को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं, और जो वो चाहता है फ्यूचर में उसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो जैसे शिवानी जी ने कहा, आप प्लीज कॉल करें 647-979-2791। इन गर्मियों की छुट्टियों में अच्छी तरह से बच्चों को तैयार कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं वो, तो प्लीज कॉल देम ऑन दिस नंबर.
1: क्या बात है. और कहते हैं ना कि एक्सप्लोर लर्न मोर एंड सक्सीड विद अनिल कुमार जी. जैसे उनका जो आपकी जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उससे आपको ये पता होता है कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए. तो इसीलिए बस वही तरीका होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस आप में, बच्चे का कॉन्फिडेंस आप में, और जो वर्ड ऑफ माउथ जाता है उसके तो कहने ही क्या. हमारे पास इतने सारे लोग कॉल करते हैं. देखिए ये क्या होता है कि एक जो बच्चे का जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस अचीव करने में. ऐसा मेरा मानना है, शायद आप अग्री करें मुझसे. और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप के ज़रिए अगर आप अपने बच्चे को ऊंचाइयों पर चमकता देखना चाहते हैं, नंबर यही घुमाइए 6479792791. अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर हैविंग यू विद अस.
10: थैंक यू.
1: थैंक यू जी.

0: सुपर डुपर हिट गानों के साथ चल रहा है ये सफ़र आपके और हमारे साथ रेडियो टोरंटो कनाडा की इस खूबसूरत सी महफिल में आप साथ जुड़े हुए हैं। और आज तो अलग ही ख़ास दिन है क्योंकि आज हम लाइव ऑन लोकेशन हैं और आमिर हमारे साथ लगातार जुड़ रही हैं, लगातार हमें अपडेट दे रही हैं। और चलिए फिर से उनके पास लिए चलते हैं। आमिर, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हजारों लोगों की तादाद है जिनको ग्रांट मिल चुकी है। अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको ग्रांट मिली है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सर।
2: हेलो
1: जी। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपको तकरीबन कितनी ग्रांट मिली, कब मिली, हमें अपनी कहानी सुनाइए, जो आपकी एक शॉर्ट स्टोरी है, कैसे आपने इनसे कांटेक्ट किया, कितनी फंडिंग मिली।
2: 101.3 एफएम के सारे लिसनर को नमस्ते। सबसे पहले मेरे तरफ से
1: शुक्रिया।
2: मेरा नाम भविन पटेल है और मैंने यूनि ग्लोबल एडवाइजरी से सर्विस ली थी, उनके आपके आपसे टेस्टिमोनियल देना था। तो हाँ सर जी, मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट ईयर अगस्त में मैंने इनसे मतलब मेरा एडमिशन लिया था। तो
1: अच्छा।
2: दो साल का मेरा बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स मैंने लिया था।
1: अच्छा।
2: तो उसमें पहली पेमेंट मेरे को 17 अक्टूबर को आई, वो 21,760 रुपये सॉरी डॉलर।
1: और
2: दूसरी नहीं रुपये में नहीं सॉरी
1: जी जी डॉलर।
2: हाँ हाँ। और दूसरी जो पेमेंट है वो मुझे 5 फरवरी को आई और वो है 14,601 डॉलर। ओके, तो टोटल मेरा अच्छा। हुआ 36,000।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही।
2: हाँ, एक साल की मेरे को वो पेमेंट मिली है। और ऑफसेट ने जो कॉलेज की फीस थी करीब 10,000 वो डायरेक्ट कॉलेज को भेज दी।
1: अच्छा, तो ये कॉलेज की फीस निकाल के जो आपको पैसे मिले आप वो बता दें।
2: हाँ जी हाँ जी। तो उसके अंदर आधा लोन है और आधी ग्रांट है। तो अच्छा। करीब मुझे समझ लो कि 46,000 इन लोगों ने मुझे लोन दिलवाया और इन लोगों ने मेरे को $200 चार्ज करा, वो भी ग्रांट मिलने के बाद। और उनके ग्रांट मिलने से पहले इन्होंने मुझे कोई मतलब डॉलर नहीं चार्ज करा और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है।
1: यहाँ पे नागपाल जी भी मौजूद हैं, इनको भी शामिल करते हैं। आपको याद तो होंगे ये कैंडिडेट।
3: थैंक यू भावेश जी।
2: ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू जी।
1: जी नागपाल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं एज लिमिट के हवाले से कि क्या एज लिमिट रहती है, 70 साल, 75 साल, 65 साल, या क्या बैकग्राउंड हो, कौन सा एरिया हो, कौन सा इलाका हो, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट।
3: हाँ जी, सो इसमें बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए एंड देन फैमिली साइज पे डिपेंड करती है। फैमिली ऑफ टू है तो आपकी 45,000 आपको आता है, उसमें से कॉलेज की फीस निकाल के आपके अकाउंट में पैसे भी जमा जाते हैं। कोर्स पर डिपेंड करता है कि किसी की 11 है, किसी की 10 है, किसी की लाइक 15
1: जी,
3: तो बाकी पैसे आपके खाते में आ गए। और अगर फैमिली ऑफ 5 आपके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, आपकी फंडिंग नीचे उतर आती है
1: जी।
3: तो मतलब इसी में कहते हैं 30,000 to 100,000 की फंडिंग। हाफ ट्यूशन ग्रांट।
1: अच्छा,
3: हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनके 8 बच्चे हैं, उनकी फंडिंग तो 1.5 लाख,
1: वो तो 1.5 लाख के करीब करीब पहुंच जाएगी।
3: बिल्कुल, तो बच्चों को डिपेंड करता है कि फंडिंग कितनी आती अच्छा। है। तो अभी जिस भाविन भाई ने आपको बताया हमारे बारे में फैमिली ऑफ टू में,
1: अच्छा,
3: अगर जैसे सिंपल जैसे थिंग, तो हमें कॉल करें, अपना एस्टिमेट कराएं, हमारे ऑफिस आए। हमें ना फंडिंग का वर्ड सुनने लगता है कुछ कैच होगा, बट हम गारंटी देते हैं कोई कैच नहीं है।
1: टाइम
3: हो गया हमें कट्टू का हिसाब, हमें लालच है नहीं, हमें अपनी गुल्लक देखनी है, फंडिंग देखनी नहीं
1: सही।
3: और हम वॉल्यूम में काम करते हैं। अगर टीका लगाना होता अकेले बैठे महीने के 4 पॉइंट करके
1: बिल्कुल
3: घर हो जाए, मतलब शोर से मचाते हैं, पैसा तो लगाते हैं
1: बिल्कुल,
3: क्योंकि ईमानदारी से काम करते हैं, काफी नहीं मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ
1: इट। यहाँ कॉल करेंगे आप और ग्रांट के लिए, फंडिंग के लिए एक ही नाम, एक ही नंबर है, यूनि ग्लोबल एडवाइजरी और 218 एक्सपो बुलेवर्ड मिसिसागा। हम सब यहाँ मौजूद हैं, 7-8 लोग हैं जो कम कर रहे हैं। आज की डेट में इनरोल कराइए, ये नंबर मिलाइए और 1 लाख तक की फंडिंग भी हो सकती है। इट इज पॉसिबल, डिपेंड करता है आपका फैमिली साइज क्या है। नंबर बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, अभी कॉल कीजिए 437 264-3175. नंबर अगेन 437-264-3175.
0: Over to you, Shira. Thank you so much. कहते हैं the most beautiful thing is to see a person smiling. सबसे खूबसूरत चीज़ होती है जब आप किसी को स्माइल करते हुए देखते हैं, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये होती है, and even more beautiful thing is when you know that you are the reason behind it. और अगर कोई इंसान मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खुश है, और अब आपको लगता है कि उसके पीछे की रीज़न आप हैं, उसके पीछे का जो वजह है वो आप हैं, उससे बड़ी खुशी किसी को हो ही नहीं सकती, है ना। और ये हमारी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रही है ना, वो ऐसी खुशी ऑलमोस्ट एवरी डे महसूस करती हैं, क्योंकि हम आज आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। हमेशा हमारे शो में आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती हैं, हमें खूबसूरत बनाती हैं, क्योंकि अगर हमारे बाल अच्छे होते हैं ना, तो पहले के ज़माने में लोगों की जो खूबसूरती थी उसमें सबसे पहले जिसकी मिसाल दी जाती थी वो अच्छे बालों की दी जाती थी। तो नवीन, आपका वेलकम करेंगे रेडियो टोरंटो कनाडा में। कैसी हैं आप?
4: थैंक यू सो मच शिवानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे मैंने जिक्र किया ना कि जब आपके पास आते होंगे लोग, उनके हेयर वैसे ही पहले से और उनसे बेहतर ग्रो हो जाते हैं, और मुस्कुराते हुए आते होंगे, और ऐसा लगता होगा ना, कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतने कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, मेकअप भी करवा लें, अगर बाल ठीक नहीं होते हैं ना, तो लुक जो है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट होता है। आई थिंक आप अग्री करेंगे मुझसे, है ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है
0: ना। तो ज़रा बताइए हमारे लिसनर्स को, क्योंकि वैसे तो लिसनर्स आपको जानते हैं, लेकिन नए नए लिसनर्स भी जुड़ते हैं हमारे साथ, और आजकल हेयर फॉल तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसके कितने ही सारे रीज़न हम गिना सकते हैं, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप ही के पास है, तो कैसे आप करती हैं ये, किस जरिए से आप हेयर ग्रो करती हैं, और इसके लिए कौन कौन से लोग आपको अप्लाई आपके साथ आ सकते हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है फॉलो करना पड़ेगा?
4: जी जी शिवानी, इसमें 18 से ऊपर अगर आपकी उम्र है और आपके बाल गिर रहे हैं एंड थिनिंग हो रही है, क्योंकि अब मेरे पास बच्चे बच्चियां भी आ रहे हैं, दिल तो दुखता है लेकिन खुशी इस बात की होती है कि आई कैन हेल्प देम, उनके बाल हेयर फॉल रुकती है विद द फर्स्ट सेशन, इट्स कॉल्ड स्कैल्प माइक्रो नीडलिंग। हम हेयर ग्रोथ सीरम एक बहुत हाई क्वालिटी का मैं यूज करती हूँ। हम जब हेयर पे आपके स्कैल्प पे माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो हम वो साथ हेयर ग्रोथ सीरम डालते हैं, और वो उस सीरम से आपकी हेयर ग्रोथ होती है। फर्स्ट सेशन में आपकी हेयर फॉल डिक्रीज होगी, आपके बाल गिरना बंद होंगे
0: जी,
4: और फिर सेकेंड सेशन जो आप 3 वीक्स के बाद लेते हैं,
0: अच्छा,
4: उसमें आपकी हेयर ग्रोथ होना शुरू होती है। एंड आई हैव लाइक बहुत सी पिक्चर्स हैं मेरे पास बिफोर एंड आफ्टर की, अगर आपके बाल गिर रहे हैं सो यू कैन सेंड मी योर पिक्चर and I'll send you my results and you can see कि ये चीज़ वाकई ही काम करती है।
0: जी तो ये जो आपने बताया है कि जनरली मतलब नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में यही प्रोसीजर आप फॉलो करती हैं कि किस किस किस स्टेज में आके जो है वो कौन कैसे कैसे ट्रीटमेंट आप देती हैं, तो ये क्या सबके लिए यही होता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द हेयर फॉल, किसी के ज़्यादा हेयर फॉल है, किसी के बहुत कम है, या किसी के बिल्कुल इतने ज़्यादा है कि उस पर ज़्यादा काम करना पड़े, ऐसा होता है कुछ?
4: ऐसा होता है अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर गए हैं,
0: अच्छा।
4: तो पहली बात तो ये कि मैं ये रेकमेंड ही नहीं करूंगी इफ यू हैव लॉस्ट लाइक मोस्टली लाइक 80-90% ऑफ योर हेयर। इसलिए मैं पिक्चर्स मांगती हूँ अपने क्लाइंट से कि आप मुझे फोन पे कंसल्टेशन कर लीजिए, तो मैं उनको ऑनेस्टली बता देती हूँ कि जी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, बट इफ यू हैव हेयर कुछ भी रह गए हैं तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए है।
0: क्या बात है तो ज़्यादातर लोग, जैसे इतने सारे लोग आपकी इस जो मिरेकल ट्रीटमेंट है उसका फ़ायदा उठाते हैं। नवीन, एक सवाल ये आता है कि अगर हम बजट की बात करें तो सबको थोड़ा सा बजट देखना पड़ता है, तो इसलिए लोग हमसे भी कहते हैं कि अगर हम ग्रुप में जाते हैं, जैसे कुछ फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या फैमिली मेम्बर्स में 3 या 4 लोग साथ में लेते हैं, तो कुछ डिस्काउंट है, कुछ बेहतर आप कर पाती हैं, कर पाएंगे उनके लिए?
4: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो मैं आपको भी डिस्काउंट, जैसे अगर एक इंसान जो अच्छा। आना चाह रहे हैं मेरे पास वो उनको भी मैं डिस्काउंट पैकेज बना के दूंगी,
0: अच्छा,
4: फॉर 3 सेशंस, और अगर आप किसी फ्रेंड को फैमिली मेंबर को लेके आएंगे तो आपको फिर स्पेशल मतलब और भी डिस्काउंट मिलेगा इसमें दोनों को।
0: दैट्स सो अमेजिंग, एक तो अपने बाल वापस आ जाएंगे, खूबसूरत नजर आएंगी, और डिस्काउंट मिलेगा वो अलग, और ये सब सिर्फ एक ही नंबर पे मिलेगा, वो नंबर है 8097. That's 647-960-8097. और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं किसी वजह से अभी नंबर एक आध कुछ मिस हो गया तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस एनी टाइम. हम आपसे आप हमसे नंबर ले सकते हैं. नंबर एक बार फिर से बता दूं, 647-960-8097. नवीन, प्लेजर हैविंग यू विद अस एज ऑलवेज. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.
4: थैंक यू फॉर हैविंग मी. बाय
0: बाय.

0: लेट डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विथ $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: 40 सालों का विश्वास, सफर हर बार खास। स्टारलाइट ट्रेवल्स, आयटा एंड टीकॉक सर्टिफाइड ट्रेवल एजेंसी, लेड बाय ट्रेवल एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा जी, विद 18 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेकिंग जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड मेमोरेबल। चीपेस्ट एयर फेयर डील्स हो या ऑल इंक्लूसिव वेकेशंस, कस्टमाइज हॉलीडे पैकेजेस, वीजा असिस्टेंस या ट्रेवल इंश्योरेंस, सब कुछ एक ही छत के नीचे। सपनों की डेस्टिनेशन हो या फैमिली वेकेशन, स्टारलाइट ट्रेवल बनाए हर सफर टेंशन फ्री और अनफॉरगेटेबल। स्टारलाइट ट्रेवल, सफर सिर्फ ट्रेवल नहीं, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। विजिट स्टारलाइट ट्रेवल्स, 7777 वेस्टर्न रोड, यूनिट 221 वॉन, और कॉल 416-745-0000, 416-745-0000।
2: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज, 416-605-2584, 416-605-2584।
0: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: 251 रेडियो टोरंटो कनाडा का ये शो चल रहा है आपके और हमारे साथ साथ, और नंबर 4372643175 ये नंबर है जो आज का हॉट लाइन नंबर बना हुआ है। और एक डेस्टिनेशन, ऑल रोड्स आर लीडिंग टू वन डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन है 218 एक्सपोर्ट बुलेवार्ड इन मिसिसागा, जहाँ पे लाइव लोकेशन

0: 01-0009.
1: Dr. Neil Gajar, 735 Twain Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
3: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम यहाँ के दोस्त जतीन, मैदान का रोमांच, आइए स्पोर्ट्स की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा, पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को हराया। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 1-0 से हरा दिया। मैच का इकलौता और मैच विनिंग गोल खुद लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेल के 6 मिनट में दागा। उम्र सिर्फ एक नंबर है बॉस, रोनाल्डो भाई 41 साल के हो गए हैं, लेकिन मैदान पर ऐसे भागते हैं जैसे अभी अभी 18 साल के हुए हैं। उज्बेकिस्तान वाले अभी अपनी पोजीशन संभाली रहे थे कि रोनाल्डो ने सूट करता हुआ गोल कर दिया। पुर्तगाल के फैंस तो झूम रहे हैं और विरोधी टीम सोच रही है ये बंदा रिटायर कब होने वाला है भाई। ग्रुप स्टेज के कड़े मुकाबलों के बाद लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से और फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराकर अगले नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय क्रिकेट में इतिहास, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की जर्सी। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाले 15 वर्षीय बैटिंग सनसनी वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की ऑफिशियल जर्सी मिल गई है। वह इस हफ्ते आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करके सचिन तेंदुलकर का सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 15 साल की उम्र में जब हम लोग स्कूल बंक करने का बहाना ढूंढ रहे होते थे, तब वैभव भाई ने टीम इंडिया की ब्लू जर्सी अनपैक कर दी है। IPL में गेंदबाजों का धागा खोलने के बाद अब ये लड़का इंटरनेशनल लेवल पर तबाही मचाने को तैयार है। सचिन पाजी का रिकॉर्ड खतरे में है और गेंदबाजों का BP अभी भी हाई है। हाँ जी, और बेंद्र भाइयों, आपको बता दे, भारत की श्री चरणी बनी दुनिया की नंबर 1 T20 गेंदबाज। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत की युवा स्पिनर श्री चरणी ने ICC रैंकिंग में इतिहास रचते हुए दुनिया की नंबर 1 T20 आई गेंदबाज का ताज अपने नाम कर लिया है। श्री चरणी को बहुत बहुत बधाई। ये डू वॉइस, हम है आप ही के दोस्त जतीन, स्पोर्ट्स की हर खबर weeklyvoice.com पर।

मीट अगेन ऑन दिस डे, जो हर उस चीज को इम्पोर्टेंस दे देता है जो गुलाबी रंग की होती है. एंड इट्स नॉट एज सेम एज दैट डे ऑफ पिंक ईयर, दो इट्स कॉल्ड एज नेशनल पिंक डे, जो सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर की ही बात करता है, सॉफ्टर सॉफ्टर साइड ऑफ दैट पैशनेट वाला रेड. गुलाबी आंखें, गुलाबी गाल, गुलाबी शहर, गुलाबी मन और गुलाबी गुलाबी सी दोस्ती विद दैट प्रोबेबल आर्ट ऑफ गुलाबी लव. सो ऑन दिस गुलाबी भरी नोट, दिस इज स्वाति एंड हैंसल लिटिल मिनी क्विज सी अबाउट इट बाय वंडरिंग कि भाई प्यार का रंग आखिर क्या होता है. कुछ इसे लाल इश्क बता देते हैं, कुछ सतरंगी कह देते हैं, कुछ काला ना सफेद है ये तो ग्रे वाला शेड लगा देते हैं, और कुछ गेरुआ. आप क्या कहते हैं?

0: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located at 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस है ना. अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स तो कितना अच्छा हो है ना. यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स. तो भाई ये पॉसिबल है. कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353. उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं. 6474535353.
0: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में. लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक. यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है विद अ 3% रेट ब्रेक. इस साल की जबरदस्त ऑफर एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर. कॉल करें DonValleyNorthLexus.com या विजिट करें इन पर्सन. A proud member of Wayne's Auto Group.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है, एक नया डॉल हाउस। टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
8: Let's turn it up.
9: Let's kick it up.
10: Let's shake it up.
11: Yeah.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
2: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: म्यूजिक चार्ट्स पर ये है ऑन टॉप, प्राइवेट स्टूडियो से लुककर इंडी पॉप।
6: अब तो आ रहे आस पास आ रही।

0: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: बस एक कप कॉफी या मिथ के साथ और मॉर्गेज होगी आपके हाथ. योर मॉर्गेज मंत्र विद अमित खुराना. मॉर्गेज का खेल कितना भी आपको मुश्किल लगता हो, पर अमित जी से बात करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा. ये मैं कब से बताती आ रही हूँ. नंबर है उनका 6473412785. आपकी बात भी कराऊंगी क्विकली आज. और जब तक आप करते हैं बात, बस हमारे साथ जुड़े रहें और स्टूडियो कॉल कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क. 416-593-0055 इज़ द नंबर. अमित जी वेलकम.
2: कैसे हैं स्वाति जी आप?
1: बिल्कुल ठीक है अमित जी. और रेट्स आपसे पहले पूछना चाहूंगी, पर उसके बाद मेरे पास एक सवाल भी है तैयार.
2: श्योर डेफिनेटली स्वाति जी, एनी टाइम प्लीज. सबसे पहले सब लिस्टर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड आफ्टरनून. रेट्स आपने कहा कि पहले पूछना चाहेंगी, तो चलिए ठीक है, मैं रेट्स बताता हूँ. रेट्स में थोड़ी सी एक्साइटिंग न्यूज है. वेरिएबल रेट में डिस्काउंट प्राइम माइनस वन पे चला गया है. पहले मैं आपके टॉक शो पे या आप जो भी मेरा ऐड करते हैं उसमें प्राइम माइनस 90 हम हमेशा रेडियो पैक अनाउंस करें, बट इट हैज नॉट गॉन डाउन टू प्राइम माइनस 1, विच मींस इट इज 3.45. प्राइम आज की डेट में 4.45 है. और हमारा जो 5 ईयर फिक्स और 3 ईयर फिक्स, इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 4.09 4.19 डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक एंड डिपेंडिंग आप इस का लोन अमाउंट और अदर फैक्टर्स, बट इट इज बिटवीन 4.09 टू 4.19 इज 3 इयर्स एंड 5 इयर फिक्स. बट वेरिएबल रेट में गुड अनाउंसमेंट है, इट्स प्राइम माइनस 1 व्हिच इज 3.45.
1: परफेक्ट. चले तो रेट्स की हुई बात, अब बैंक्स का आपने जिक्र किया है, तो मेरा सवाल आज एक उसी से रिलेटेड है. एक समस्या सामने ये आई किसी जनाब कर, उन्होंने पूछा है ये कि वो ये कहते हैं कि जब भी रिन्यूअल की बात आती है और हम रिन्यूअल कर रहे होते हैं सेम बैंक के साथ, तो अगर इज इट ओके इफ द सेम बैंक इज आस्किंग फॉर इनकम डॉक्यूमेंट्स अगेन, क्योंकि कबरतन के पास सारी तो रिपोर्ट है फिर मांग रहे हैं हमसे.
2: नहीं नहीं सर, तो स्वाति जी लेट मी आपका क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया. आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी क्लाइंट की मॉर्गेज रिन्यूअल के लिए आ रही है
1: जी,
2: और वो अगर सेम बैंक के संग स्टे करना चाहते हैं, वो इनकम डॉक्यूमेंट्स, दे आर आस्किंग फॉर इनकम डॉक्यूमेंट्स अगेन.
1: जी जी जी बिल्कुल सेम सवाल.
2: नहीं स्वाति जी, ये जिसने भी आपसे सवाल पूछा है इसमें थोड़ा सा मैं ये क्लैरिफिकेशन सब लिसनर्स को देता हूँ. जब भी हमारी मॉर्गेज रिन्यूअल के लिए आती है, बैंक्स आपसे कभी भी इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता.
1: अरे
2: यस, जस्ट क्लैरिफाइंग, यहाँ पे दो चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी इनकम डॉक्यूमेंट्स. यस, इफ यू आर आस्किंग फॉर एडिशनल इक्विटी टेकआउट, या आप अपना टर्म चेंज कराना चाह रहे हैं, या मैं इसको एक बिल्कुल सीधी साधी लैंग्वेज में बोलूं, अगर आप अपनी मॉर्गेज में कोई चेंजेस करवाना चाह रहे हैं, चेंजेस विद द सेम बैंक, यस, इन दैट केस then they will check your credit, they will ask your income documents, they can ask for other documents also. But agar let's suppose kari aapki mortgage renewal ke liye aayi, aapka renewal account amount 6 lakh dollar hai, bank kehta hai ki ye renewal ke document hai, agar aapne us renewal ke document pe bank se jo bhi negotiate kiya us pe aapko koi income documents nahi puche jayenge ya koi additional documents nahi mange jayenge. Let me repeat again, the only time bank will ask for additional documents if you are looking for additional money takeout like equity takeout, ya aap apni koi term ko change karate hain, in that case bank will ask you for documents, otherwise they will not ask you for any piece of the additional document. Even aapki credit bhi kharab hogi ho to bhi wo aapse koi documents ya credit ka question nahi raise karenge aapse.
1: ओके चले, ये तो आपने क्लैरिफाई बहुत अच्छा कर दिया कि अगर जो रिन्यूअल में है सेम बैंक के साथ भी, तो भी दे विल नॉट आस्क फॉर एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, दे विल ओनली आस्क इफ देर इज एनी चेंज रिक्वेस्टेड इन योर मॉर्गेज, आप पैसा निकालना चाह रहे हैं या कुछ और ज़्यादा है, तो वो ज़रूर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपका नंबर एक बार ज़रूर देना चाहूँगी अमित जी फिर से, 647-341-2785। जिन लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं या परिस्थिति ऐसी है, वो एक बार बात करके समझ ज़रूर लें कि क्या ये ठीक है नहीं है या इसमें क्या किया जा सकता है। एक कप कॉफी हम तभी कहते हैं अमित जी के साथ, और मॉर्गेज या सारे जवाब होंगे आपके हाथ। अमित जी और कुछ जोड़ना चाहेंगे?
2: बस स्वाति जी इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो आपने अभी क्वेश्चन रेज किया है, जब भी हमारी मॉर्गेज रिन्यूअल के लिए आती है तो हमको दो चीजें जरूर जरूर हमको रिव्यू करनी चाहिए। नंबर वन, शॉप राउंड जरूर करना चाहिए। जो भी बैंक आपको रेट ऑफर कर रहा है पहले सेम बैंक से नेगोशिएट करें, अगर आप कन्विंस नहीं होते तो आप शॉप राउंड करी। जैसे मैंने अभी प्राइम माइनस वन का रेट अनाउंस किया, लेट सपोज करी ये बैंक आपको रेट नहीं दे रहा तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, सबसे बड़ी चीज जब भी हमारी मॉर्गेज रिन्यूअल के लिए आती है, अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मॉर्गेज एडवाइजर के संग जरूर डिस्कस करें, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कुछ इक्विटी निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, तो आपके ऊपर मॉर्गेज ब्रेक की पेनल्टी नहीं लगती। क्योंकि कभी कभार हम अपना डिसीजन इसको डिले कर देते हैं, या कभी कभी हम रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन या इक्विटी टेकआउट का ऑप्शन इसलिए ड्रॉप कर देते हैं जब हमको पैसों की जरूरत होती है, तब पता चलता है जी अगर मैंने आज मॉर्गेज ब्रेक करी तो बैंक मेरे से 20,000 पेनल्टी लगा लेगा या 12,000 पेनल्टी लगाए, हम उस टाइम पे फिर अपनी रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन या आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। बट रिन्यूअल के टाइम पे आपके ऊपर ये चीजें नहीं लगेंगी। तो व्हेन इट कम्स फॉर रिन्यूअल, शॉप अराउंड के कोई पैसे नहीं लग रहे, और अगर आप अपनी बैंक चेंज करते हैं तो आपको ना लीगल फीस देनी है ना आपने अप्रेजल फीस देनी है। सेकंड चीज, मेक श्योर कि अगर आपके ऊपर डेट्स हो रखे हैं तो आप रीफाइनेंसिंग करा लीजिए, क्योंकि तब आपके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगेगी, एंड इन रीफाइनेंसिंग में आप अपनी सारे डेट्स कंसोलिडेट करा सकते हैं। नो मोर इन डिटेल, 647-341-2785, 647-341-2785।
1: ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लियर कट एडवाइस। 647-341-2785 इज द नंबर। ऐसी साफ सुथरी, यू नो, नो कन्फ्यूजन वाली एडवाइस के लिए आप एक बार अमित जी को कॉल जरूर किया करें। नंबर उनका रहता है 647-341-2785। नोट नहीं कर पाए मुझसे ले लीजिए, वरना गूगल करेंगे तो बहुत आराम से अमित जी का नंबर भी मिलेगा और डिटेल्स भी। थैंक यू अमित जी, फिर कनेक्ट करते हैं आपसे। गुड लक।
2: Thank you, Swati ji. Take care and enjoy. Thank you.
3: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में। लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक। यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है। विद अ 3% रेट ब्रेक इस साल की जबरदस्त ऑफर, एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर। कॉल करें donvalleynorthlexus.com या विजिट करें इन पर्सन। A proud member of Wayne's Auto Group.

0: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare sirf 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल. एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच. 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है.
2: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
1: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट. 6472994757, 6472994757, teamsabarwal.com.
3: Real estate ka koi sawal, Team Sabarwal.
4: Get smart with Saurabh Sabarwal on Filmi Nukkad. ऑलराइट, टीम सबरवाल के सौरभ सबरवाल जी से आप डेफिनेटली इस नंबर पे बात कर सकते हैं आफ्टर दिस सेगमेंट, विच इज 6478648844. ये जो सेमिनार के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके बारे में भी जानेंगे और इस वक्त क्या कहता है हमारा इकोनॉमिक अपडेट, उसके बारे में भी कुछ अपडेट लेंगे. पर उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें. अगर आपका कोई सवाल डायरेक्ट पूछने के लिए है उनसे ड्यूरिंग द सेगमेंट, तो स्टूडियो का नंबर भी नोट कर लें, एंड दैट इज 416-593-0055. हर ट्यूसडे की तरह ये ट्यूसडे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहना है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा. सौरभ जी, वेलकम.
5: जी थैंक यू स्वाति जी, और डेफिनेटली बहुत you know there's so much going on in the world or statistically like we've hit ek kisam se milestone kalo ya you know what I'm trying to get at is ki for after a very very long time Canada ki jo population hai it has dropped in the first quarter of 2026 which is ek kisam se unheard of in the longest time possible.
4: बिल्कुल, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है. अभी आज का सिर्फ मेसी रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं या फीफा में ही नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड बन गया है.
5: जी, तो भले ही यू नो पॉपुलेशन डिप बाय 55,000 पीपल इन द फर्स्ट थ्री मंथ्स, बट इट इज अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम. क्योंकि आप अगर देखो यू नो फॉर मेनी इयर्स कनाडा में क्या है कि बड़ा सिंपल सा रूल रहा है, फॉर्मूला रहा है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ की ब्रिंग मोर इमिग्रेंट, ब्रिंग मोर पीपल and the economy will kind of work itself out. Or on you know more people definitely means more workers, consumers, more home buyers, more taxpayers. But ab kya hai jo ye economy, ye jo hamari growth engine ab jo hai it is slowing down. Statistics Canada abhi recently unhone report kiya tha ki Canada's population declined. जैसे मैंने कहा कि यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम इनफैक्ट एक्चुअली डिक्लाइन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर. तो व्हाट दिस मींस फॉर हाउसिंग जॉब्स, बिजनेसेस, ब्रॉडर इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें हैं जो यू नो वी कैन टच अपॉन टुडे. तो व्हाई इज कनाडाज पॉपुलेशन श्रिंकिंग? इमिग्रेशन टारगेट्स रिड्यूस हुए हैं, टेम्पररी रेजिडेंट्स छोड़ रहे हैं कनाडा को, इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप्स हैं, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स की रिडक्शन हुई है, ऑब्वियसली एजिंग पॉपुलेशन विच इज ऑल्सो समथिंग एवरी अदर कंट्री गोज थ्रू. तो यू नो ये द गवर्नमेंट स्पेंड सो मेनी इयर्स ट्राइंग टू एक्सेलरेट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सिंस for the longest time 70s 80s 90s 2000s mein like that has been the name of the game ek kisam se. You know population growth hai, you need to bring more people in from every part of the world. And that's basically what it is. Now ab kya ho raha hai, things have taken a very different turn ki population has gone down. Now what that means is you have people basically you know पहले तो बहुत बड़ी ग्रोथ होती थी रेंटल डिमांड एक किस्म से अगर आप रियल एस्टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो,
4: राइट,
5: रेंटल डिमांड हैज सॉफ्टन्ड, कॉन्डो मार्केट हैज इट्स ओन चैलेंजेस. वैसे तो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज, बट अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, बट दैट इज एन इम्पैक्ट दैट बिकम्स फ्रॉम लेस पीपल बींग इन दिस कंट्री. होम ओनरशिप अफोर्डेबिलिटी में काफी फर्क पड़ता है, और आपकी हाउसिंग सप्लाई शॉर्टेज तो भले ही अभी भी है. तो यू नो दैट इज समथिंग दैट वी फाइंड वी आर गोइंग थ्रू एज वेल. नाउ अनदर थिंग इज इट गुड कि पॉपुलेशन कम हो रही है, या इज इट रियली बैड फॉर द इकोनॉमी? क्योंकि देखिए बेनिफिट्स अगर आप देखो तो लेस स्ट्रेन ऑन हाउसिंग है, लेस प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में होता था, there was certain time frame of the day, हमें पता था eastbound 401 would be not as busy as westbound. क्योंकि you know we'd be Ajax Durham were not as populated as they were.
4: अब तो ऐसा, अब नहीं सोच सकते ऐसा.
5: हाँ, तो क्योंकि now 401, 403 are constantly busy any time of the day.
4: Yeah.
5: तो इसलिए यू नो लेस प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पोटेंशियली अपवर्ड प्रेशर ऑन रेंट्स भी हो सकता है एज अ बेनिफिट. लेस अपवर्ड प्रेशर इज व्हाट आई मीन. अब जो हम देख रहे हैं, जो हम गो थ्रू कर रहे हैं कि रेंट्स हैव कम डाउन फॉर द हाउसिंग, फॉर द कॉन्डोज, जो हम अभी व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एज अ साइकिल. तो चैलेंजेस क्या है? Challenges is what we are concerned more with. Slower economic growth, less consumer spending, or lower business expansion. So, ye economy thoda sa sluggish bana deti hai because of this. So, you know, ek kisam se hum housing pressure to solve kar lenge shayad. Magar dusri problem ya ek point jo nikalta hai yahan se, jo hume potential problem nikalti hai, that is slower economic growth.
4: जी.
5: तो you know काफी सालों से हमने बोलते हैं कि यार housing market is out of the reach, that is you know we don't have too much going on. But now the problem becomes कि we are going to face slower economic growth because of the lack of population.
4: Yeah, but मैं ये भी देख रही थी कि कहने के there are signs of per capita growth recovery. इस क्योंकि जब वो होता है तो पर कैपिटा में मैं देख रही थी कि उसमें ये भी बता रहे, तो एक बहुत सारे नेगेटिव में एक छोटा सा रोशनी दिख रही होती है बस इसमें.
5: डेफिनेटली देखिए इट ऑल कम्स डाउन टू व्हिच डायरेक्शन द कंट्री इज बीइंग टेकन टुवर्ड्स.
4: या
5: नाउ प्रोडक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है दैट इज इनफैक्ट दैट इज समथिंग वी हैव फेस्ड एज अ नेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो why ab kya ho sakta hai, like you know innovation is one of those things, technology, business investment, productivity improvements jo hum kar sakte hain, that is what the government needs to focus on. So adding people is very easy,
4: kabhi bhi khol do, bula lo
5: and we've seen that for quite a long time. Magar increasing productivity is what makes things challenging.
4: Yes.
5: तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ तो गए, बट उनसे हमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि दे वर टेकिंग अ लॉट ऑफ लो वेज जॉब्स.
4: हाँ, ठीक बात है.
5: बट दैट डज नॉट आंसर द प्रोडक्टिविटी साइड ऑफ थिंग्स, राइट? और ये क्योंकि हम यूएस के बिल्कुल करीब हैं, दैट इज वेयर द ब्रेन ड्रेन हैपेंस. आपने मेरे को बहुत बार सुना होगा बोलते हुए कि ब्रेन ड्रेन हमारा होता है, जो बहुत सालों से होता जा रहा है, 25-30 यू नो इवन मोर इवन बिफोर आई लाइक वी केम टू दिस कंट्री. क्योंकि इट इज अ मच बिगर मार्केट, दे हैव मच मोर टू ऑफर. तो दोज चैलेंजेस विल रिमेन, हैव ऑलवेज रिमेन्ड. तो हाउ डू वी मेक दैट मोर अट्रैक्टिव फॉर आवर पोटेंशियली educated,
4: high productive,
5: high ranking officials to make sure they stay here.
4: जी.
5: So that is challenging, and then obviously we want to make sure productivity increases. Canada.
4: बिल्कुल ठीक बात.
5: So that is basically what the new challenge is. और average Canadian के लिए what does all this mean? एक किस्म से, you know, for homeowners, it's going to be less aggressive housing demand. Mm-hmm. For renters के लिए, potentially, you know, there will be more negotiating power, जो हम अभी देख रहे हैं. We see it happen as we speak.
4: Mm-hmm.
5: जो workers हैं, job market है, it will become more competitive.
4: Mm-hmm.
5: Investors mm-hmm. जो हैं, for investors, population growth, भले ही, you know, so investors ke liye population growth may no longer be enough to drive returns.
4: Oh.
5: That is what I'm trying to get at.
4: Mm-hmm.
5: When there's not too much competition, when there's no not enough production happening, like, you know, construction nahi ho rahi, to phir it becomes a very it becomes a slower return ek kisam se.
4: Okay. I have a caller. Let's see if they want to ask any question.
5: Sure.
4: Hello, G. Hello.
6: Hello.
4: Do you want to ask a question?
6: Yeah. Can I be direct with Saurabh Sabharwal?
4: You are on air, sir.
6: Okay. बहुत-बहुत शुक्रिया आप community की help कर रहे हैं. मुझे एक दो सवाल है. वैसे तो detached और townhouse के बारे में भी, लेकिन main focus जो है वो मेरा होगा condo की market के हिसाब से.
5: अच्छा,
6: बड़े ध्यान से मेरा सवाल सुनिएगा ताकि उसके आप उसका जवाब देने में आसानी हो मेरे लिए भी और लिसनर्स के लिए भी. अच्छा, सवाल पहला तो ये कि कॉन्डो मार्केट जो है उसका क्या है अभी करंटली, क्या मतलब उसकी मार्केट करंट फ्यूचर में, मतलब मोस्ट रिसेंट फ्यूचर, जैसे 1 year, 2 year, 3 year या चौथे या पांचवें साल में जाकर के वो करेक्ट होगी या उससे प्रॉफिट आना शुरू होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट पे कब आएगी, नंबर वन. सॉरी, नंबर टू ये कि ये जो वैसे तो बहुत सारे कॉन्डो हर जगह हैं जीटीए में, लेकिन ये अभी 5-7 साल पहले बिल्कुल जंगल था, ये नॉर्थ ओशवा. नॉर्थ ओशवा में 3 टावर एकदम से बने हैं, टावर 1, 2 और 3, और मेजर बैंक्स, एम्यूनिटीज जबरदस्त बहुत, लेकिन जाहिर हर जगह पलटा खाया है, तो यहाँ भी एकदम धड़ाम से नीचे आ गई है मार्केट. जो जिन लोगों ने जो है 5-5, 6-6 लाख के कॉन्डो लिए थे, उनके 3 लाख बल्कि 2.5 लाख पे आ गए. तो अब ये बताएं कि अगर किसके पास कॉन्डो है यहाँ पे टावर 2 में या 3 में, तो उसको बेचना चाहिए या नहीं, और बेचना चाहिए तो कब बेचना चाहिए और कितनी प्राइस पे बेचना चाहिए. जिसने 5.5 लाख का या समझे 5 लाख का लिया था कॉन्डो 1 या 1+10, और उसकी मार्केट अगर 360 उसको मिल रही है, 360 या 350, तो उसको बेचना चाहिए या नहीं. जी, थैंक यू.
5: जी, मैं आई डिडंट गेट योर नेम सर, आपका नाम.
4: जी, डिस्कनेक्ट हो गया है, सॉरी सौरभ जी.
5: जी, चलिए. एनीवेज, अब देखिए, बड़ी सीधी सी, it's not a very very straight forward answer, क्योंकि nobody has a crystal ball की भैया आज रात को क्या है, अगले महीने क्या है, 2 महीने में क्या है. But the way we see market, you know, eventually it has to come up. The graph always does come up. There are a lot of factors internally, externally जो affect कर रहे हैं market को. Overall global economy को अगर आप देखो, we are not the only ones, you know, in this kind of situation. So, it's not fair to say ki, it's not fair to expect constant returns, always appreciation. Ki, you know, we have to ride the wave, Swatiji, as we say.
4: Mm-hmm. Hmm.
5: You know, realistically, any investment carries risk. Regardless wo stocks ho, real estate ho, external factors both hote hain, internal factors bhi both hote hain, leadership pe bada fark padta hai, policies pe bada fark padta hai, but we go with the way the market is at that time.
4: Yes.
5: And projections that have been given at that time.
4: Mm-hmm.
5: Where things are going, are being told ki ye, this is the direction the country is taking. So getting back to the point, at this time, mere hisab se, and this is my own professional opinion,
4: mm-hmm.
5: I think in another 3 to 4 years, we should see market go become a little better from what it is right now.
4: Okay.
5: Because a lot of headache, काफी सिरदर्दी जो हम देखने को मिल रही है, is also coming from the U.S. because of their leadership. Tariffs का आज इतना बढ़ाएंगे, कल 10% बढ़ाया, परसों 20% बढ़ाया टैरिफ. तो मार्केट्स कैन नॉट परफॉर्म व्हेन थिंग्स आर वेरी अनस्टेबल.
4: जी,
5: मार्केट विल ओनली परफॉर्म व्हेन देयर इज स्मूथ सेलिंग, व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्मूथनेस एंड पीस ऑफ माइंड एक किस्म से. तो मेरे हिसाब से इट विल टेक सम टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज बेस्ट टू कीप इट, रेंट इट आउट एंड जस्ट राइड द वेव, लाइक आई सेड.
4: ओके,
5: अ लॉट ऑफ पीपल आर इन दिस सिचुएशन एट दिस टाइम, बट दैट इज द बेस्ट वे. क्योंकि वही अगर 4-5 lakh के लिए हुए हैं और आज की डेट में वो 3-3.5 के बिकते हैं, देन इफ यू आर अनएबल टू सस्टेन, then you don't have any choice but to sell it anyways. But if you are able to sustain it, if you are able to keep it for a long time, that is the most ideal situation. Kyunki dekhiye hua kya pichle 5-8 saalon mein,
4: ji,
5: the way the market was performing, the way the developers were building construction sites, houses, semis, condos, ye wo sara, everything was fine and dandy, everybody was very happy, everybody was making money. But things change, things never remain the same. 2008-2009 mein financial crisis aaye the, everybody was, sabke haath upar khade hue the, bhaiya this is absolutely crazy. But think of where we have come after such a long time. Things do get better, it will they will definitely get better, it just takes time.
4: Okay.
5: Now it's unfair to say ki, mujhe to sirf profit hi chahiye, I cannot endure any loss. So we just have to ride the wave. That's the best way to put it.
4: Chale,
5: toh,
4: ji, bataye, ji, please continue.
5: And that's what I'm saying. To 2028-29, even 30 tak baat ja sakti hai, when we see some sort of recovery.
4: Okay.
5: But that's my prediction. Don't
4: चलें, आप ही की ओपिनियन जाननी थी, एक्सपर्ट ओपिनियन जिसे हम कहते हैं. छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, विल बी बैक विद मोर विद सौरभ जी. आप हमारे साथ ट्यून इन रहे सब लोग, और स्टूडियो का नंबर 4165930055.

0: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक। यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है विद अ 3% रेट ब्रेक इस साल की जबरदस्त ऑफर। एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर। कॉल करें DonValleyNorthLexus.com या विजिट करें इन पर्सन। A proud member of Wings Auto Group.
1: Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmino.

0: जो भी हम एस टैक्स पेयर्स किसी भी सूरत में जैसे कहते हैं ना, प्रोडक्टिविटी वाइज क्या उसका असर हो सकता है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब हम सौरभ जी से बात करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत क्लैरिटी आती है जो हमें पता भी नहीं होती कई बार, या पता होती है तो समझ में नहीं आ रही होती। पर वेल, अभी हम और भी बात करेंगे उनसे, जुड़े रहे हमारे साथ। सौरभ जी, एक सेमिनार के बारे में मैं आज सुन रही थी उसके, और आपने लास्ट टाइम जिक्र भी किया था, तो वो कब है, क्या टाइम आ गया उसका?
1: तो हाँ जी बिल्कुल, जाते जाते मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, वी आर कंडक्टिंग अ सेमिनार, जो मैंने आपको थोड़ा सा टीजर दिया था पिछली एक दो बार
0: जी।
1: जुलाई 26 इज व्हेन द सेमिनार इज गोइंग टू बी, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम बायर्स, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड सेमिनार, वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर आप नहीं आएंगे तो डेफिनेटली इट इज समथिंग यू विल मिस आउट ऑन। हमारी इन हाउस टीम, इंटायर इन हाउस टीम होगी, मॉर्गेज एजेंट्स, मॉर्गेज टीम है, इन हाउस लॉयर्स हैं, विल बी कवरिंग वास्ट टॉपिक्स, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या इंसेंटिव्स हैं और किन चीज़ों का आप फायदा उठा सकते हैं, और लॉट ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट। इफ यू आर, जैसे बोलते हैं ना, इफ यू आर लॉस्ट की विच डायरेक्शन यू शुड टेक, दिस इज समवेयर यू नीड टू बी। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, teamsabarwal.com पे जाके रजिस्टर करिए। यू नो, वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस इन द कमिंग डेज वीक्स, एंड नॉट समथिंग यू शुड मिस आउट ऑन, स्पेशली इफ यू आर इन द मार्केट एंड यू नीड सम डायरेक्शन वेयर थिंग्स आर गोइंग।
0: परफेक्ट। तो ये जुलाई 26 को है, ये मैं फिर से बता देती हूँ, और इसमें एक इन हाउस लॉयर्स की टीम, मॉन्की जेजेंस और बहुत सारे प्रोफेशनल्स की टीम होगी पूरी टीम सबरवाल की तरफ से, जो बहुत सारी अदर जानकारियाँ आपको देंगे व्हेन इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर और इन्वेस्टर और अ रिपीटेड वन। तो ये आपको मिस नहीं करना चाहिए, पर इसके बारे में सुनते रहें, वेन्यू और डिटेल्स आपको पता चलती रहेंगी। थैंक यू सौरभ जी फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे अगेन विद अस, और अगले हफ्ते फिर करते हैं बात
1: जी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू जी।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353।
5: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
1: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा। बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार। ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफरोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
4: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
3: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
5: Follow us on Instagram. It's rjswati_Toronto.
6: And a quick reminder, हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट इज विद अस ऑलरेडी. हम कुछ ही देर में उनका सेगमेंट आपके साथ शुरू करेंगे विच इज़ कॉल्ड नंबर्स डू वंडर्स. नंबर्स कैसे वंडर्स कर सकते हैं हमारी ज़िंदगी में और फॉर पॉजिटिव कुछ बदलाव ला सकते हैं वो भी जानेंगे और बहुत सारी बातें. और आप अपने सवाल डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. तो बस रेडी रखिए स्टूडियो का नंबर और योर क्वेश्चन. एंड स्टूडियो का नंबर इज़ 416-593-0055. अब से बस कुछ ही देर में ही इज़ गोइंग टू बी ऑन एयर विद यू guys.

जी हाँ, मैं स्वाति और हैरी के साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम और पढ़ रही थी कि पुण्यतिथि है बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की, पॉलीमैथ, ट्रू रेनेसेंस मैन, वेरियसली टैलेंटेड, और नाम है हृदयनाथ चट्टोपाध्याय। प्रोलिफिक पोएट थे, प्ले राइट थे, स्टेज डायरेक्टर थे, एक्टर थे, सिंगर सॉन्ग राइटर थे, कंपोजर, पेंटर और पता नहीं क्या क्या, यानी मेनी लाइव्स पैक्ड इनटू वन। मजे की बात ये कि मदर टंग इनकी बंगाली थी, पर अधिकतर लिखा जो है ना इन्होंने वो अंग्रेजी में लिखा है, या फिर सेकेंड नंबर पे आप कह सकते हैं हिंदी भाषा में। नर्सरी राइम्स जो इनकी हिंदी के हैं ये तो पायनियर रहे हैं, उसके बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं आज भी, और वैसे तो साइंस के स्टूडेंट रहे थे पर दिल से एकदम पक्के वाले आर्टिस्ट, इनफैक्ट आप कह सकते हैं डीएनए से आर्टिस्ट, क्योंकि फैमिली में ना इनके जो सभी भाई बहन थे वो ऐसे ही थे, लाइक लिटिल हाउस ऑफ टैगोर्स आप कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता था। फॉर इंस्टेंस सरोजनी नायडू जी, मतलब कितनी अच्छी पोएट थी, बुलबुले हिंद कहलाती थी, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट भी रही थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो इनकी बहन थी, तो उस परिवार से थे। और हृदयनाथ जी की जो पोएम्स है ना, अगर मैं देखती हूँ तो एक अक्सर मुझे वो कहते हैं ना उड़ते उड़ते कोई चीज़ आप पढ़ते हो या याद करते हो तो धरातल पे ले आती है, वो है शेपर शेप्ड, जिसमें कुछ जिक्र है कुम्हार का कि उसको ये लगता है कि उसकी उंगलियों में ना पावर है कि जिससे मिट्टी को जैसे भी वो चाहे वो ढाल सकता है, एंड जैसे जैसे उसमें विजडम वॉक इन करती है उसके दिमाग में मन में, ही स्टॉप्स बीइंग अ पॉटर एंड ही लर्न्स टू बी अ क्ले एंड बी रेडी टू मोल्ड हिमसेल्फ रादर देन मोल्डिंग अदर्स। इन शॉर्ट, दूसरों को बदलने के चक्कर में ना रहें, खुद को बदलें। गाना विच इज वेरी फेमस फ्रॉम 70s, जूली फिल्म का ये गाना है, और अगर आपको नहीं पता तो अब पता कर लें कि ये लिखा इन्होंने ही है।

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: और राइट जैसे कि हमने करी थी बात हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज उब्रॉय जी और सेगमेंट रहता है नंबर्स डू वंडर्स कैसे क्या इनका तो पूरी तरीके से विश्वास है मानना है हम सबको कई बार डाउट्स हो जाते हैं तो उसी के लिए ये है कि आप पूछें सवाल ये देंगे जवाब और अगर आपको कोई और भी पूछने हैं सवाल रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी आपकी अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करना चाहते हैं कोई सवाल है तो भाई स्टूडियो का नंबर रहेगा 416-593-0055 वेलकम सर
2: थैंक यू सो मच स्वाति जी एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जैसा आपने कहा मेरा तो अटूट विश्वास है ही नंबर्स पे बट मेरे विश्वास से क्या होता है मेरा एक और मोटो है कि आप लोग भी उस पर इतना ही विश्वास करें जितना मैं करता हूँ
1: तो इसमें इस जो आपका कोर्स है अगर मैं कुछ दिन का वो कोर्स करती हूँ 30 डेज आप कहते हैं मुझे 30 डेज दें तो मेरा विश्वास ना से हाँ पे बदल जाएगा
2: वो तो दूसरे दिन बदल जाएगा
1: अच्छा दूसरे दिन बदल
2: जाएगा तीसवें दिन के बाद तो आप मास्टर होंगे
1: अच्छा तीसरे दिन के बाद मैं लोगों को बदल रही होंगी
2: बिल्कुल बिल्कुल खुद तो बदलेंगे ही लव योर फर्स्ट इज योरसेल्फ यू नो चैरिटी बिगिंस एट होम सबसे पहले आपको विश्वास करना है और उसके बाद में आप खुद ही देखेंगे कि लोग आपके साथ कैसे जुड़ते हैं
1: चलें परफेक्ट स्टूडियो का नंबर अगेन इफ यू वांट टू टॉक टू हिम डायरेक्टली 416-593-0055 अनुजी मुझे एक चीज बताएं लेकिन मेरे हमेशा जहन में रही है ये जैसे आपने जब से नंबर्स बताने शुरू करें ध्यान जाना शुरू हुआ है अब कई बार ये भी देखते हैं कि जो नंबर्स होते हैं आप बताते हैं ये नंबर आपके दोस्त हैं ये नंबर आपके लिए लकी नंबर है तो कुछ एनिमी नंबर्स भी होते हैं
2: मैम देखिए जहाँ अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है
1: राइट
2: हर नंबर के साथ में उसके कुछ ट्रेड्स भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं एंड कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं है हर किसी में कमी है हर किसी के दोस्त हैं हर किसी के दुश्मन हैं
1: राइट
2: तो ये कंपैटिबिलिटी तो न्यूमरोलॉजी का बेस ही है
1: अच्छा
2: सबसे बड़े दो ही बेस है पहला है 5 एलिमेंट्स और दूसरा है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स
1: अच्छा
2: कौन सा नंबर किसके साथ कंपैटिबल है सारी गेम उसी की है और एज यूजुअल आप तो खुद ही एक वाली है तो आपसे ही शुरू करते
1: हैं चलिए शुरू करें
2: और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे आज शायद 3 महीने हो गए मुझे शो पे आते अब तक आप बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर सब लोग समझते ही होंगे तो आपका बर्थ नंबर 1 है आपकी डेस्टिनी 3 है
1: जी
2: तो आपका सबसे बड़े दुश्मन है नंबर 8 शनि
1: ओके
2: और दूसरा दुश्मन कुछ हद तक रहेगा नंबर 6
1: ओके
2: 3 और 6 की जहां बात करें 369 डेफिनेटली इज अ फैमिली ऑफ नंबर्स बट रिलेशनशिप खराब करता है सक्सेस बहुत मिलता है बट रिलेशनशिप खराब होती है 3 और 6 में
1: अच्छा तो जितने भी 6 नंबर वाले लोग हैं और 8 नंबर वाले प्लीज मेरे से काइंड रहें थोड़ा सा
2: देखिए आपने आज ब्लैक पहन रखा है ये ब्लैक आपके लिए अच्छा नहीं है कलर थेरेपी भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है तो जो ब्लैक है वो राहु या शनि को रिप्रेजेंट करता है तो कहीं ना कहीं ऑरा खराब करता है नंबर 1 वालों का
1: अरे वाह तो, मेरी को तो आधी वार्डरोब बदलनी पड़ जाएगी अपनी
2: ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं ना चलिए मैम आज कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं आज सब आपने ऐसे बात शुरू करी है तो नंबर्स की आज पोल खोलते हैं
1: अच्छा पोल खोलें चलें ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है मेरा कि किस किस की पोल कहां कहां खुल सकती है विद नंबर्स
2: आज सब नंबर्स की पोल खोलते
1: हैं ठीक है आई एम इन
2: एंड एज यूजुअल शुरुआत तो आपसे ही होगी
1: और चलें आई एम इन अगेन
2: आप एक वाले हो तो हर चीज की शुरुआत आपसे
1: सबसे आगे लगे होते हैं
2: बिल्कुल जहां आप खड़े होते हैं लाइन ही वहीं से शुरू होती है
1: क्या बात बस यही सच है
2: ये नंबर 1 वालों के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है ये जहां पर खुद को ऐसा ही समझते हैं कि जहां हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी तो बॉर्न लीडर्स तो होते हैं इसमें तो कोई शक नहीं मगर हल्का सा भी इनको कॉर्नर किया जाए जहां पर इन पे प्रेशर आएगा वहां पर ये प्रेशर नहीं ले सकते वहां पर ये रिटेलिएट करेंगे और ऐसा भी बोले कि नंबर 1 वाला अगर जॉब में है और बॉस उनको उंगली कर रहा है तो इनकी सबसे पहले पोल यहीं खुल जाएगी ये प्रेशर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे
1: तो या तो कह देंगे हम जा रहे हैं
2: हमारे मेरे बस का ही नहीं है
1: अच्छा हम नहीं कर रहे हैं
2: मेरे बस का ही नहीं है और रेजिग्नेशन तो इनकी जेब में रहेगा ऐसे मौके पर
1: तड़ी कहते हैं इसे तड़ी
2: बिल्कुल तड़ी कहते हैं अगर आप पोल खोल रहे हैं तो सही वर्ड तड़ी ही है।
1: जी।
2: अब बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू को बोला जाता है एक इमोशनल कनेक्ट, फैमिली पर्सन, बिल्कुल तू पूरी तरह से रिलेशनशिप बनाने वाला। मगर जहां पर इनको किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया या प्रेशर आ गया तो ये ओवरथिंकिंग मोड में चले जाते हैं, फिर अपने आप को सब चीजों से कट करके या तो रोना शुरू हो जाएंगे या फिर एक कॉर्नर में जाके बैठ जाएंगे। तो मूड स्विंग्स इनका बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेट होता है। अब मैं अपनी पोल खोलता हूँ, मैं खुद तीन नंबर वाला हूँ। तीन नंबर वाला ज्ञान का भंडार होता है, किसी भी चीज में दुनिया में इनसे बात कर लीजिए, इनके पास जवाब होगा। मगर जब सामने वाला इनकी बात ना सुने या इनकी सलाह पे अमल ना करे तो इनको लगता है सामने वाला तो गधा है, इसमें अकल नहीं है जो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो ज्ञान बांटने की इनको बहुत बड़ी बीमारी होती है। आई एम श्योर ऑडियंस आपको भी ये लगता होगा, मैं भी कुछ ज्यादा ही ज्ञान बांटता हूँ। अब बात करें नंबर चार की। नंबर चार अपने आप में एक पावर हाउस होता है। जितना मेहनत करने का जज्बा नंबर चार या आठ में होता है उतना किसी और में नहीं है। मगर जुबान से अपना ये सब बोल खोल रहे हैं तो मैं सॉरी पार्डन भी, बट ये अपना बेड़ा गरक खुद ही करते हैं अपनी जुबान की वजह से। बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत जिद्दी मिजाज के होते हैं। नंबर फाइव सबसे इंटरेस्टिंग, नंबर पांच इनको एक्टिविटी ही ले डूबती है। ये एक बारी में 12 काम करेंगे, 10 भी नहीं 12 काम करने की कोशिश करेंगे। इनको 9 to 5 रूटीन जॉब इनके बस में नहीं है। इनको हमेशा इतने बड़े चेंज लवर्स है कि हर चीज में इनको चेंज चाहिए और वही इनकी शॉर्टकमिंग है। नंबर सिक्स बहुत लग्जूरियस, हर चीज में लग्जरी चाहिए। मगर जहां पर इनको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, यहां पर इनकी तारीफ नहीं हुई कि वाह क्या काम किया है, वहां पर इनको फिर इनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। सामने वाले को देखने का नजरिया बदल जाएगा। फिर एक इंग्लिश में वर्ड है ना, टॉन्ट गेम्स। नंबर सिक्स डिप्लोमेसी, तो इनसे अच्छी टॉन्ट गेम्स भी कोई नहीं खेल सकता।
1: अच्छा।
2: नंबर सेवन की पोल खोलते हैं। नंबर सेवन स्पिरिचुअल लीडर होता है, एक बहुत ही जिसको बोले, मैं हमेशा बोलता हूँ नंबर सेवन वाले प्योर सोल्स होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, मगर अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इनको लगता है पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट साजिश कर रही है, तो जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं, सारी दुनिया से बायकॉट कर देंगे, मोबाइल बंद कर देंगे, एक कोने में दुबक के बैठ जाएंगे, ये बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। तो ये इनकी शॉर्टकमिंग है। आठ नंबर की कमी होती है, अगेन अ पावर हाउस लाइक नंबर फोर। नंबर एट इज अ पावर हाउस टू, मगर इनकी मैं इनकी कमी है।
1: मैं
2: हालांकि मैं डायरेक्टली नाइन की प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं इनमें इतनी अकड़ है कि ये किसी से कुछ मांग नहीं सकते, कुछ शेयर नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर घुटेंगे किसी से प्रॉब्लम है मगर उसके सामने जाके कंफर्ट नहीं करेंगे। राइट तो इनकी जो एक ईगो तो नहीं बोलूंगा, एक सेल्फ प्रेस्टीज की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा होती है। ये अपनी प्रॉब्लम्स या अपना दुख भी किसी के आगे नहीं खोलते हैं। नंबर नाइन जिसको बोलूं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर, हमेशा मैं कहता हूं वॉरियर लाइक पर्सनैलिटी होती है नंबर नाइन की। मगर यहां पर ईगो आती है, गर्म मिजाजी आती है। इट इज एज सिंपल एज माई वे और हाई वे, या तो मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो। इनमें कुछ भी करे ना, मतलब सिक्स एंड नाइन उल्टे लिखते हैं तो सिक्स वाली डिप्लोमेसी इनको छू कर भी नहीं गई, दे आर जस्ट टू रिजिड। तो ये थी एक से नौ तक की सारे नंबर्स के आज हमने पोल खोली।
1: आप सहमत हैं या नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो आपका होगा या आपके अपनों का होगा जिनको आप जानते होंगे, और आप इस पोल खोल से सहमत हैं या नहीं, या हमें प्लीज कॉल करके जरूर बताएं, या कोई और सवाल है आपका तो स्टूडियो का नंबर 4165930055 कॉल अस, एंड मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट जो है हमारे अनुज जी वो आपको डायरेक्ट जवाब देंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, विल बी बैक विद मोर।

0: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: ऑल राइट, आप हैं फिल्मी नुक्कड़ पर स्वाति पायस्विनी और अनुज ओब्रॉय जी के साथ. हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट इज इन द स्टूडियो विद अस. हम अभी बात कर रहे थे नंबर्स की, पोल खोल रहे थे, रादर बात नहीं कर रहे थे, पोल खोल रही थी सबकी कि किस नंबर में क्या क्या एक छोटे छोटे नेगेटिव ट्रेट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर दैट पर्सनैलिटी. तो अगर आप उस पर वर्क कर सकते हैं इवन इफ इट इज़ योर ट्रेट, तो उसको थोड़ा माइल्डर इम्पैक्ट आप पे रहेगा. बेसिकली बताने का तरीका वही था. पर अगर आपके कोई सवाल हैं स्टूडियो में, आप कॉल इन करके पूछ सकते हैं अनुज जी से. स्टूडियो का नंबर 4165930055. एक कॉल ले लें.
2: बिल्कुल ले लेते हैं.
1: चलें चलें. ऑल राइट. हेलो जी. हेलो
3: हेलो.
1: हाँ जी, आपका सवाल. आप नाम बताना चाहें तो प्लीज बताएं, वरना सवाल और डेट ऑफ बर्थ. कैन यू हियर अस?
3: हेलो. या
1: सो नाम बताना चाहें तो प्लीज टेल अस योर नेम इन केस यू वांट टू, और देन गो विद योर डेट ऑफ बर्थ एंड डू योर क्वेश्चन.
3: Yeah, my date of birth is May 15, 1980. I just want to ask about my business and the health.
2: I'm sorry, sir. Could you repeat your question, please? I didn't get you.
1: Business and health.
3: Yeah, my health and business.
2: So there is no major issue, and business depends on your nature of work.
3: Okay.
2: What do you do?
3: I thought to run a restaurant.
2: Restaurant suits you, sir. But make sure you include some kind of drinks in it as well.
3: Okay.
2: I don't mean alcoholic drinks, but even if cocktails, mocktails, lassi, anything to do with liquid. That suits
3: okay.
2: you.
3: Thank you.
2: You're very welcome, sir.
3: Thank you, sir.
1: Okay, ek call le lete hain, caller. Hello, ji. Hello? Can you hear us?
4: Hello?
1: Yes, what's your name and your question with date of birth?
4: Yeah, my name is Vishal.
1: Okay, Vishal.
4: Yeah, my birth date is 26 May 1994.
1: Mm-hmm.
4: Yeah, my question is...
2: Vishal ji, I'm sorry, just could you repeat your date of birth again?
4: 26 May 1994.
1: 26 May.
2: Mm-hmm. Your question, please.
4: होंडा से मर्सिडीज तक और इकोनॉमी से बिजनेस क्लास तक कितनी देर लगेगी?
1: क्या बात है, सवाल पूछने का तरीका ही देखें कितना बढ़िया है इनका. सबका सवाल होता है ये.
2: 26 May 1994, राइट?
1: जी.
4: बाकी तो सब कुछ है
2: सर. होंडा का सफर थोड़ा मुश्किल रहा होगा, मर्सिडीज का सफर आसान हो जाएगा. व्हाट आई सी इज, सॉरी मेरे मुंह में धूल, मैं गलत बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप में इश्यूज दिखते हैं सर, थोड़ा उस पर काम कीजिए. पैसे तो आप बना ही लेंगे.
4: ठीक है सर.
2: ठीक है,
1: चलें.
2: थैंक यू सर.
4: एप्रोक्स टाइम सर.
2: सॉरी,
4: एप्रोक्स टाइम
2: सर, उसके लिए ऑफ एयर बात कर लीजिएगा. 6473308555. सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. अभी एक क्वेश्चन पर कॉलर.
1: ठीक है, चलें नेक्स्ट. हेलो जी.
5: Hello.
1: Yes, what's your name, your date of birth, and your question, please.
5: Right, so this is regarding my uncle's date of birth.
1: Mm-hmm.
5: It's 29th of July, 1954.
1: Okay.
5: And what about his career and health?
2: Career to theek hi raha hoga, there's no major issue. Abhi to health pe zyada focus kariye. This year is good for his, as per his health, this year is very, very good. Last year, maybe there were some problems related to health, but in case there is any carried forward problems, he'll be much better this year than the last.
5: Okay, thank you.
2: Last 2 years were a bit thoda off and on, but moving forward, he'll be better off.
5: Okay, thank you.
2: You're very welcome.
1: All right, hum ek aur caller lete hain. Hello, ji.
6: हेलो
1: जी, आपका सवाल, नाम और डेट ऑफ बर्थ?
6: December 16, 1976.
1: यस ओके, एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन?
6: मेरी तीसरी शादी मुझे सूट करेगी कि नहीं?
2: तीसरी शादी
6: जी
2: सर, लोगों की एक नहीं हो रही, आप तीसरी की बात कर रहे हैं? मस्ती बस तो है आप, इसमें कोई शक नहीं, 3 बार 6 आता है, 2 बार 7 आता है, बट आई डोंट थिंक योर क्वेश्चन इज ट्रू।
6: नहीं, सूट करेगी मतलब चलेगी
2: सर, चलाना चाहेंगे तो जरूर चलेगी, ये तो आपके हाथ में है ना। 77 है तो अब मैं ऑन एयर बोल नहीं सकता हूँ प्रॉब्लम क्या है, कभी ऑफ एयर बात करिए फिर मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है।
6: नहीं, 77 तो है ही नहीं कहीं, December 15 मैंने बोला है।
2: 16 बोला है ना, 16?
6: नहीं,
2: 15। ओके, मेरे को 16 सुना था सर, सॉरी अबाउट दैट, एक मिनट दीजिए मुझे। अब वे बेटर हो गया सर,
6: तो इसका मतलब है चलेगी
2: सर। नंबर आपके रॉकेट वाले हैं, आप चलाना चाहें आपके हाथ में है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये 6 और 5 का कॉम्बिनेशन जो होता है सर, दिस इज यू नो वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन टू हैव।
6: ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं फिर
2: आप रॉकेट है सर, अब रॉकेट को रॉकेट के जैसे चलाना है या आपको होंडा सिविक के जैसे चलाना है वो आपके हाथ में है, पर आप रॉकेट
6: है। ठीक है, आप इसको प्रोसीड करते हैं।
2: ठीक है सर, बिल्कुल।
6: थैंक यू।
1: मुझे गाना याद आ रहा है, कौन सी फिल्म का था, रॉकेट सिंह। चलें, एनीवे हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी।
7: हेलो।
1: हाँ जी, आपका क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ?
7: 29 जून 1991।
1: सॉरी,
7: हसीबुल्ला सैयद।
1: अच्छा, नाम बता रहे हैं सर?
7: नाम जो है हसीबुल्ला सैयद, 29 जून 1991।
2: जी सैयद साहब, अपना क्वेश्चन बताइए।
7: फ्यूचर कैसे रहेंगे सर?
2: सर फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा रिलीजन की तरफ भी ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया काम करेंगे आप। आपका नेम नंबर, आपका जो मूलांक आता है ना, वो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस टच आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छी स्ट्रांग डेट है आपकी, पानी से रिलेटेड काम कीजिए और थोड़ा ऊपर वाले को ध्यान रखिए बस।
7: अच्छा,
2: बढ़िया है सर। आगे थोड़ा सा अगर कोई सेक्टर वीक है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इश्यू जरूर देख सकता हूँ मैं, और वो भी माइनर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, स्ट्रांग डेट ऑफ बर्थ है।
7: ओके,
2: थैंक यू सर,
7: थैंक यू।
1: ऑलराइट, नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी।
8: हेलो।
1: हाँ जी, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन?
8: राइट, इट इज 26 सितंबर 1966। हेल्थ कैसी रहेगी?
2: सर अगले 2 साल, ये साल नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी पैसे काफ़ी कमाए हैं और रिलेशनशिप मतलब घर फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, स्पेशली बच्चों को लेकर। थोड़ा सा बस ये ईयर थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए सर, ये 2 साल जो है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स है हेल्थ सेक्टर में, उसके अलावा कुछ लंबा चौड़ा वो नहीं है। दिस ईयर इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट फेज। ठीक, इस साल भी या नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए, हो सके तो जितना ब्लड डोनेट कर सके अच्छा है आपके लिए।
8: ओके,
2: या ब्लड टेस्ट करा लीजिए वो भी अच्छा है।
1: अच्छा, वो टेस्ट में क्योंकि थोड़ा सा तो निकल ही जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए सर, जो आर्टिफिशियली आप वही एनवायरनमेंट क्रिएट कर लीजिए जो हेल्थ इश्यूज में होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम क्लिनिक में जाके स्पेंड कर लीजिए, वहाँ से कुछ खा पी लीजिए, एक सैंडविच ले लीजिए, एक पानी की बोतल ले लीजिए, स्पेंड सम टाइम देयर, आपके लिए अच्छा रहेगा।
1: मतलब विजिट जो है आपकी वो हॉस्पिटल में, वैसे ही आप वीकेंड पे एक विजिट मराया करें, एम आई राइट?
2: बिल्कुल, कुछ हद तक यस, एंड यू नो द बेस्ट वे इज की जब एज होती है थोड़ी तो हम बार बार ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, बट एवरी 2-3 मंथ्स हम ब्लड टेस्ट तो करा ही सकते हैं।
8: राइट,
2: ओके सर, थैंक यू।
1: चलिए नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी।
9: हेलो
1: हाँ जी, आपका सवाल और योर डेट ऑफ बर्थ?
9: स्वाति जी, दिस इज अतुल।
1: अच्छा अतुल जी, हेलो।
9: हेलो, कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक।
9: ओके, सो माय डेट ऑफ बर्थ इज 22 जून 1968, मूलांक 4, भाग्यांक 7।
1: क्या बात, ये तो फोन पे न्यूमरोलॉजी सीख गए अतुल जी तो।
9: हाँ, सुनते आते हैं ना।
1: जी बिल्कुल ठीक किया
2: अतुल जी। सबसे पहले तो आपको विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। नहीं, जून।
1: अरे वाह, ये देखिए प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड। हैप्पी बर्थडे सर।
9: थैंक सो मच, अप्रिशिएट अप्रिशिएट, थैंक यू। एक सवाल एक ही है, द फाइनेंसेस आर रनिंग वेरी बैड, लाइक दो आई अर्न वेरी वेल पर पैसा टिकता नहीं है एंड एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है।
2: सर, एक्सपेंसेस तो बढ़ना अच्छा साइन होता है, बस लाइन ऑफ क्रेडिट घटनी चाहिए। एक्सपेंसेस जितने बड़े उतना अच्छा है। यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू मेक गुड मनी। 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है सर, राहु और केतु दोनों मिलके पूरी बॉडी को कंप्लीट कर रहे हैं। 80% लक फैक्टर रहता है। दिस इज अ गुड स्ट्रांग कॉम्बिनेशन। यूज मोर ग्रीन्स इन लाइफ। थोड़ा सा यू नो, जैसे आपने बोला बैलेंस थोड़ा सा वीक है, सो यूज ग्रीन इन योर लाइफ, इट विल बी हेल्पफुल।
9: May I understand better, like what do you mean by green?
2: Green color.
9: Green color, okay.
2: Watch पहनी है सर एक green shade की। अब मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको अपनी watch दिखाता।
9: जरूर से सर, that is good advice.
2: A metallic watch with a green dial will be very very good for you. Wear it 24/7.
9: Okay जी, okay. Appreciate.
1: चले बर्थडे पे ग्रीन वॉच खरीदें अपने लिए अतुल जी।
2: अपने आपको गिफ्ट दीजिए सर, और एक मेरे को भी भिजवा दे दें।
9: जरूर सर, मेरी बेटी को बोलता हूँ कि लाइक गिफ्ट मी समथिंग।
2: हाँ, टेल हर टू गेट यू 2 watches, 1 for yourself, 1 for me।
9: डन।
2: चलो डन, आई विल वेट।
1: चले अतुल जी, आप ट्यून इन रहे, आपके लिए अच्छा सा गाना प्ले करने वाली हूँ मैं बर्थडे का, बट फिलहाल नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी।
10: हेलो स्वाति जी।
1: जी हाँ जी, कैसे हैं?
10: बस बढ़िया, एकदम पीछा बढ़िया।
1: चलिए नाम बताइए सर पहले।
10: मेरा नाम विपिन कुमार है।
1: विपिन जी, अच्छा विपिन जी, चलिए डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं।
10: ओ, मेरा बेटा शादी के लिए नहीं मान रहा है, उसको कई बार बोर्ड करते हैं। January 3, 1993 टोरंटो में बर्थ है उसका।
2: सर दोबारा बोलेंगे डेट प्लीज।
10: 30 January 1993, 7:30 बर्थ टाइम इन टोरंटो।
1: अच्छा, टोरंटो की पैदाइश है वो तो। शादी के लिए क्यों मनवा रहे हैं ये बताएं।
10: वो यार अभी उम्र जा रही है तो बोला अभी नहीं, इसीलिए।
2: सर समझदार बच्चा है, बच्चा बहुत समझदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल नेक्स्ट ईयर में उनका शादी का अच्छा योग बैठेगा। ये साल बर्थडे तो हो गया इनका, ये साल भी अच्छा चांस है, बट नेक्स्ट ईयर विल बी वे बेटर।
10: ओके, तो क्या प्रोफेशन क्या रहेगा, कोई आइडिया कुछ?
2: सर एनीथिंग टू डू विद ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन। यहाँ पर बुद्धि का यूज होता है ना, अपनी जो पढ़ाई करी है उसको यूज करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है।
10: ठीक है, धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: थैंक यू विपिन जी। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो हेलो, हम आपको सुन नहीं पा रहे, क्या आप हमें सुन पा रहे? चले मैम जी, फाइनली। हाँ जी, आपका नाम बताना चाहे तो प्लीज, और क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ।
11: हेलो, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/1/1968। मेरा क्वेश्चन है करियर और हेल्थ के बारे में, इन द नेक्स्ट फ्यूचर, इन द लिटिल व्हाइल, नेक्स्ट लिटिल व्हाइल,
1: इन अ लिटिल व्हाइल फ्रॉम नाउ।
11: या नहीं, मतलब आगे, अगले कुछ साल।
2: लास्ट ईयर कैसी रही हेल्थ?
11: Health has been overall good.
2: Last year kuch challenges dikh rahe hain, especially blood related. But this year is way better than the last. Thoda sa next year aapko careful rehna chahiye.
11: Achha.
2: Baki theek hai overall, you know, badhiya combination hai 6 and 4 and 6 ka. And 6 bhi aapka 33 se 6 aata hai, which adds on to your strengths. Very, very powerful date of birth. गुड डेट ऑफ बर्थ
1: तो आपके साथ अच्छा रहेगा सर।
2: अच्छे
11: करियर वाइज
2: बहुत बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। यू हैव द पोटेंशियल वेयर स्काई इज आल्सो नॉट द लिमिट।
1: वाओ,
2: बस good right name and right choice of profession, these can be the only hindrances. And third is thoda sa gussa. You know, kabhi kabhi gusse mein aisi baatein muh se nikal jati hai jo hamari Delhi mein bahut acche se chalti hai. To un shabdon ka thoda sa upyog kam kare to acha hai. Baki koi problem nahi hai. Very very solid date of birth.
11: Thank you.
2: You're welcome, ma'am.
1: चलें, मैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलती हूँ. मुझे एक छोटा सा एड ब्रेक भी लेना पड़ेगा, बट अगर आपके सवाल हैं प्लीज आप कॉल करें. स्टूडियो का नंबर 4165930055 और अनुज जी का नंबर रहता है
2: 6473308555.
1: आप इस नंबर पे भी डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं आफ्टर दिस सेगमेंट.
2: स्वाति जी, मैं इन सब आपके सारे ऑडियंस को आज एक गिफ्ट देना चाहता
1: हूं. जी प्लीज दीजिए.
2: मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है @numbersdowonders विद अ डबल ओ. जितने भी लोग मुझे फॉलो करेंगे और मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे 6473308555, उन सब के लिए गिफ्ट है.
1: चलें तो इस पे मैं दोबारा आती हूँ और जो कॉल कर रहे हैं उन तक भी हम दोबारा आएंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. और ये हैप्पी बर्थडे विश उन सबके लिए जिनका आज बर्थडे है. अतुल जी खास

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
7: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
6: दैट्स 416-843-7600 और विजिट myrealco.com।
5: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.
8: वेलकम बैक। आप हैं फिल्मी नुक्कर CMR 101.3 FM पर स्वाति और पायस्विनी के साथ, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज उब्रॉय जी इन द सेगमेंट नंबर्स एंड टू वंडर्स। अनुज जी ने भी एक बहुत ही धमाक की तरह अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम का जो उनका अकाउंट है नंबर्स डू वंडर्स विच इज़ DOO, वहाँ पे फॉलो करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके उन्हें आप टेक्स्ट कर देते हैं उनके सेल के नंबर पर विच इज़ 6473308555, तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट वो मुझे नहीं बता रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ, है ना।
9: आपने तो मिस कर दिया गिफ्ट।
8: हाँ, पर आप फॉलो करके गिफ्ट जरूर ले सकते हैं, तो ये आप करें। बस आपको जाना है नंबर्स डू वंडर्स, फॉलो करना, पिक्चर लेके उनको उनके नंबर पर, सेल नंबर पर टेक्स्ट कर देना है। फिलहाल एक कॉल और ले लें।
9: चलिए लेते।
8: हेलो जी। हेलो।
10: हेलो,
8: हाँ जी, आपका नाम बताना चाहे तो नाम बताएं, वरना अपना क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ।
10: मेरा नाम आरजे है, डेट ऑफ बर्थ June 29, 1981। पूछना था कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो कौन सा बिजनेस बेटर रहेगा?
9: सर अभी क्या सोच रहे हैं अभी, या व्हाट डू यू डू राइट नाउ?
10: राइट नाउ आई एम इनटू कंसल्टिंग बिजनेस, सो आईटी कंसल्टिंग।
9: सर आपके लिए एनीथिंग टू डू विद वाटर पहली बात, और दूसरा एनीथिंग ई कॉम का सेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, इस तरह का काम आपको बहुत सूट करता है।
10: ओके
9: ओके, बट अभी तो
10: थैंक यू सर।
9: नेक्स्ट ईयर ही देखिएगा, इस साल तो बिल्कुल नहीं।
10: अच्छा,
9: आई एडवाइज यू टू कीप अ डायरी और समथिंग विद यू, इवन अ स्मॉल थॉट रिगार्डिंग योर बिजनेस, जस्ट नोट इट डाउन। द बेटर यू प्लान, नेक्स्ट ईयर यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स।
10: ओके
9: ओके। So what I'm trying to say is, this is a time for planning, not execution.
10: Okay.
9: Okay? Good luck, sir.
10: Thank you.
8: Chale, next caller. Hello, ji.
11: Hello.
8: Yeah, if you want to share your name, the naam batai, when a date of birth or your question.
11: My name is, mera naam Akul hai.
10: 1968.
8: सॉरी आपकी आवाज कट गई.
10: मेरा नाम अतुल है और
8: मार्च 3, 1968.
10: सो मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू बिजनेस. बिजनेस का कैसा रहेगा अगर मैं उसमें जाना चाहता हूँ बिजनेस के लिए.
8: अच्छा अभी जॉब करते हैं, बिजनेस करना चाहते
10: अभी तो हाँ अभी जॉब करता हूँ, फुल टाइम जॉब है अभी. तो साइड में बिजनेस या तो फिर जॉब छोड़ के बिजनेस.
9: सर आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. जॉब भी आपके लिए उतनी ही अच्छी है जितनी आपके लिए बिजनेस अच्छा है. एंड आई वुड एडवाइज यू कि आप कुछ एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम करिए जहां पर आप लोगों को या कंसल्टेशन करिए. एडवाइजरी और एजुकेशन इन दोनों में से आपके लिए कुछ भी करियर आपके लिए बेटर है.
10: अभी मैं एजुकेशन फील्ड में ही हूँ.
9: बहुत अच्छा है आपके लिए एजुकेशन. सर आप 3 कॉम्बिनेशन है, डबल जुपिटर. राइट. एंड मार्च से 3 आ जाता है. तो एडवाइस तो आपके ब्लड में ही है. मैं कहूंगा थोड़ा सा कम एडवाइस करें लोगों को. अभी मैं पोल खोल रहा था ना तो 3 की यही पोल खोली थी कि इनको एडवाइस देने का बहुत ज्यादा शौक होता है.
10: नहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन बट समटाइम्स ओके. तो मेरा बिजनेस का भी
9: बराबर है सर. बिल्कुल दोनों चीजें आपके लिए सूटेबल है. 3 होता ही बैलेंस का नंबर है. ऊपर नीचे देखिए लिखते भी है ना तो सेम बिल्कुल आता है.
10: यस करेक्ट करेक्ट. हां
9: ठीक. तो अच्छा ही है आपके लिए.
10: ओके थैंक यू.
9: यू वेरी वेलकम सर.
8: चले अब इट्स ऑलमोस्ट टाइम. मैं कॉलर लास्ट लेके देखती हूँ इफ दे हैव समथिंग टू से अदरवाइज आई विल. हेलो
11: Hello, hi.
8: Hi, do you want to ask a question, sir?
11: December 22nd, 1964. I just want to know, like, how will be my overall my life, like.
9: Any surgery, sir?
11: No surgery. No, I have an eye problem, but no surgery.
9: Left or right?
11: In both the eyes. It's a retina problem.
9: Oh.
11: Yeah, it's a retina
9: problem. Yeah. Sir, आप बहुत लकी हैं अगर आपकी अभी तक सर्जरी नहीं हुई है.
11: Yeah.
9: Thank you, stars. Very, very good.
11: Okay, but in future, any like progress or anything?
9: Next 2 years are very, very good time for you.
11: Okay, sir. Thank you so much. And I like this RJ's voice. You know, she has got a very sweet voice.
8: Oh, thank you so much.
11: Yeah.
8: You made my day.
9: सर हेल्प मैं कर रहा हूँ, आप तारीफ इनकी कर रहे हैं. हमारा वैसे भी कंपटीशन चलता रहता है सर. अब कुछ अच्छा मेरे लिए भी बोलिए सर.
11: बोथ ऑफ यू गाइस.
9: नाउ इट मेक्स मी हैप्पी. आई नो शुगर कोटेड था बट कोई बात.
8: 0-1 तो हो गया आज.
11: लाफ्स इट रियली मेक्स मी वेरी हैप्पी. द वे शी लाफ्स इज रियली गुड. कीप द गुड वर्क. थैंक यू बोथ ऑफ यू.
8: थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.
9: थैंक यू.
8: ऑलराइट. अभी तो हम सबके कॉलर्स को सब कॉलर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आस्किंग योर क्वेश्चंस. एंड आपका भी सर कि आप इतना टाइम निकाल के बहुत पेशेंटली सबके आंसर्स देते हैं. पर मैं जिनके कॉल नहीं ले पाई हूँ और जिनके भी सवालों के बाद उन्होंने कहा था अनुज जी ने कि आप प्लीज़ मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑन एयर मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहूँगा फॉर डिफरेंट रीजंस. तो उनके लिए अनुज जी का नंबर रहता है 6473308555. आप इस सेगमेंट के बाद अब वहाँ पे कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं वरना अगले ट्यूसडे का इंतजार जरूर करिएगा. 6:15 अनुज जी हमारे साथ फिर जुड़ेंगे. अनुज जी जाते जाते कोई टिप क्विकली देना चाहेंगे.
9: मैम टिप तो नहीं, जितना प्यार आपके ऑडियंस से मिला है मुझे

0: मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन।
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार। ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे। इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर। ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी। लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टैकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टैकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: On this musical note, this is Swati signing off for now. Milte hain jaldi hi.

0: Studios में आप देखें नंबर 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, उसे भी लाइक कीजिए। ट्यून इन पर हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है। फोन के जरिए सुनना चाहें 647-506-0003 पर कॉल करके हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी, तमाम आई पी टी वी बॉक्सेज, जादू बोल जोन बस के साथ साथ एप्पल टीवी, अमेजान फायर टीवी, रोको टीवी के साथ साथ ऊबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी हमारे इशाद देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप से जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी। एंड्रॉयड आईफोन दोनों के लिए हमारी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन इशाद भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की निशात 7 से 9 बजे सीएमआर 101.3 एफएम जो सुनते हैं आप, हमारे टेलीविजन चैनल पे डायरेक्ट आपके लिए टेलीकास्ट भी की जाती है, तो आप हमारा प्रोग्राम टेलीविजन पे टोरंटो 360 टीवी पे देख भी सकते हैं। रियल स्टेट के वाले से कोई सर्विसेज चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए। कॉल तलाब भट्टी 647-295-7861 647-295-7861। घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए। अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में उसे ऐड कर लेंगे। जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए, तलाब भट्टी 647-295-7861 647-295-7861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। बाबुल इल्म मस्जिद अली बनी हाशिम सोसाइटी मिसागा 900 ग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट मिसागा के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी मजालिस इहतराम हरमुल हराम का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से जो उर्दू में खिताबत है मौलाना मोहम्मद अली नजफी साहब करवाते हैं बाहर जो टेंट हैं उसमें, और यूथ के लिए इंग्लिश में जो मजलिस है वो मौलाना हुसैन मुश्तहिदी साहब जो हैं वो आपके लिए पेश करते हैं। बाद नमाज मगरिब मजालिस का आगाज हो जाता है। ये 1st to 9th मुहर्रम तक की मजालिस जो हैं वो जारी रहेंगी। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि मस्जिद की तामीर के लिए और कंस्ट्रक्शन जो इनका प्रोजेक्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन के काम में या मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो स्पेशल प्रोग्राम से नियाज होती है उसके लिए आप डोनेशन देना चाहें तो मुश्ताक ज़ादी साहब से राब्ता कीजिए 416-985-0293 416-985-0293। इस साल भी दो लोगों के हज के मुकम्मल अखराजात जो हैं वो तकरीबन $30,000 बनते हैं। तीन खुशकिस्मत लोगों को फैमिलीज़ को जो हैं कुरंदाजी की जाएगी और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। पार्टिसिपेशन फ़ी $500 है। आप इसके लिए भी रब्ता कर लीजिए मुश्ताक दादी साहब से 416-985-0293 416-985-0293। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम में आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी।
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: चल इनके मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्टगेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्टगेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: टोरंटो तैयार हो जाओ, सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फैमिली एंटरटेनमेंट नाइट इनाम घर कनाडा 28 जून को, जिसमें शामिल है मजेदार डिनर, दिलचस्प गेम, बड़े इनाम और लाइव कॉन्सर्ट। टिकट सिर्फ $25, 10 जून के बाद $39। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 416-710-6777। ई ट्रांसफर inamgharcanada@gmail.com।
4: जी जनाब, इनाम घर कनाडा @gmail.com पे आप ई ट्रांसफर कर सकते हैं। बड़ा शोर है और बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां की इस दफ़ा, बड़े ज़बरदस्त किस्म के सेगमेंट्स हैं। शम्स रहमान साहब लेकर आए हैं, नंबर इनका नोट करें 4167106777, 4167106777। 28 जून को ये शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है ओताक बैंक्वेट हॉल में। शम्स भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल उन्हें सुनेंगे। शम्स भाई अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम अस्सलाम। अरशद भट्टी साहब, आज तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा।
4: यू वेलकम।
5: ये शो तो हमने शुरू किया था 5 साल पहले।
4: जी जी।
5: लेकिन जिस दिन से टोरंटो 360 टीवी और रेडियो पाकिस्तान ने हमारी प्रमोशन शुरू की है, माशाल्लाह हर शो हाउसफुल जा रहा है।
4: जबरदस्त,
5: थैंक यू वेरी मच फॉर
4: वेलकम। और क्या अभी गुंजाइश है कोई कि कुछ लोग जाहिर है?
5: जी बिल्कुल बिल्कुल है, चंद टेबलें हमने अभी और लगवाई हैं।
4: ओके,
5: तो अभी भी टाइम है क्योंकि गेट के ऊपर टिकट की प्राइस $50 होगी और इस वक्त $39 है।
4: ठीक है, तो $11 का फर्क पड़ जाएगा और फैमिली आती है तो फिर अच्छा खासा फर्क पड़े। अच्छा, क्या कुछ इस दफा होने जा रहा है, क्योंकि इनामात भी इस दफा बड़े हैं, जबरदस्त किस्म के, और सेगमेंट भी बड़े जबरदस्त किस्म के शायद मैंने देखा है कि हैं।
5: जी बिल्कुल, इस दफा तो एक हमारा सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, अलकरम ज्वेलर्स ने उसको स्पॉन्सर किया है।
4: ठीक,
5: तो एक वो बड़ी इस दफा उसमें मजा आने वाला है। दूसरा हमारा क्विज सेगमेंट है, और क्विज में भट्टी साहब आपसे भी मैं सवाल पूछा करता हूँ, बड़े आसान सवाल होते हैं कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, तो आप बताएं।
4: पंजाब इनाम मिलेगा मुझे?
5: सुबह
4: नहीं, सुबह पंजाब, सुबह आबादी के लिहाज से, और अगर रकबे के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान।
5: अरे आपके तो फिर दो इनाम हो गए।
4: जी,
5: तो इसी किस्म के सवाल आते हैं भट्टी साहब, और आपको इनाम देते हैं। और इनाम तो यहाँ पे आप जब आ जाते हैं आपका इनाम हो जाता है, आपको स्टेज पे लेके जाते हैं, आपकी पिक्चर्स लेते हैं, वीडियो लेते हैं, और फिर बाकी के 3 महीने हमारी यही चलता रहता है नेक्स्ट शो तक।
4: बिल्कुल ठीक है।
5: तो आप यू आर वेल नोन, अगर आप बिजनेस में हैं तब भी हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि इनाम घर कनाडा अब यहाँ पे मिसिसागा, ब्रैम्पटन, मिल्टन, हर जगह में हर कोई इसकी बात कर रहा है।
4: और आप $39 टिकट है, जहर इससे पहले तो आपने काफी कम टिकट रखी हुई थी, जहर अली बर्ड में तो लोग फायदा उठा लेते हैं, और इसमें डिनर है, एवरीथिंग इंक्लूडेड है इसमें, एंटरटेनमेंट, डिनर,
5: और डिनर है शेफ कोसर का, आपको पता है पाकिस्तानी कुजीन, ऑथेंटिक कुजीन है, जिन लोगों को पाकिस्तानी खाना खाने का मजा आता है, ट्रू जो के टेस्ट है, फ्लेवर है, तो वो जरूर आए। इसमें खाना भी शामिल है, इसमें इनामात भी शामिल है, बम्पर प्राइज भी शामिल है, और आपकी नेटवर्किंग होती है, आप 6 घंटे बैठे रहते हैं 300 लोगों के साथ, तो आपकी दोस्तियां बनती हैं और आपका रिलेशनशिप बनता है। सो
4: जनाब,
5: एंटरटेनमेंट भी है, नेटवर्किंग भी है,
4: ऑल इन वन कहते हैं ना, एक ही सब कुछ मिलेगा आपको। और ये 28 जून को होने जा रहा है ओताक बैंक्वेट हॉल में, और इसमें आपके लिए इनामात भी हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी है, म्यूजिकल शो, लॉट ऑफ थिंग्स जो है आप होंगी। आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या टिकट लेना चाहें, शम्स साहब से रब्ता कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप?
5: जी बहुत शुक्रिया, बस यही कहना था कि 6 बजे वक्त की पाबंदी करें, जो लोग सुन रहे हैं 6 बजे आ जाएं, 8:30 शार्प हमारा डिनर लग जाता है और सारी चीजें हमारी टाइम पे होती हैं।
4: वही राय जी, आप कॉल कर लीजिए, आप 416-710-6777, 416-710-6777।
5: संडे को हो रहा है, तो इस संडे को,
4: बिल्कुल संडे को हो रहा है, आप कॉल कर लीजिए 416-710-6777। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। हमारे स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003 पे आप रबता कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त है और 7:30 हम आपके लिए न्यूज पेश किया करते हैं, कैनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस आपके लिए पेश किया करते हैं। अभी अगर मैं देखूं वक्त में, तो थोड़ा सा हमारे पास 2-1 मिनट का वक्त है, तो दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हम एक मस्जिद के लिए हम फंड रेजिंग के हवाले से बात कर रहे थे। ये तनवीर मॉस्क है, टेलर शहर है और ये मिशिगन जो है अमेरिका में। इसके पार्किंग लॉट को कंप्लीट करना है एंड ऑफ द मंथ, उसके लिए इन्हें डोनेशन ज़रूरत है। फ्राइडे मॉस्क में नमाज होती है और फ्राइडे के अलावा अगर ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पर लोग इबादत कर सकेंगे। तो आप जावेद मलिक साहब से अगर आप डोनेशन देना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं 734-486-1513 734-486-1513 या FADISHAH 1991@gmail.com पे आप ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM हमारे स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। आपके विंडोज या डोर्स लीक हो रहे हैं, पुराने हो गए हैं, तो ये वक्त उन्हें तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स पे आप रब्ता कीजिए। आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे और एक साल के बाद पेमेंट कर सकते हैं, सम कंडीशंस में अप्लाई, और या इंस्टॉलमेंट्स में भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं 416-206-3200 इनके रबते के नंबर है। लिए चलेंगे आपको कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करती है वानी।
6: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
7: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, दिस इज मी वानी विद लोकल अपडेट्स। Aspolis Services in Canada deals with several recent on-duty deaths and injuries involving frontline personnel. Premier Doug Ford says he wants to see an emergency discussion with the country's premiers on boosting protection for the officers. Toronto brother-sister duo wins massive $75 million Lotto Max jackpot, a first in OLG history. Ontario Premier Doug Ford clashes with media over poll numbers, says, "All you have done is attack me." Canadian captain Alphonso Davies expected to play against Switzerland in the next game of FIFA World Cup in Vancouver. A man has been taken to hospital after being struck by a vehicle in Markham parking lot. Afrofest organizers facing challenges securing permit from City of Toronto due to event size. Statistics Canada reported an increase in Canadian return trip from the US, marking a year-over-year jump in April by 1.8%. An alleged Montreal shooter identified as 25-year-old man from Alberta. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
4: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM studios mein aapke number 416-593-0003। आठ मुहर्रम अल-हराम करबला के मैदान में नहायत अहमियत का हामिल दिन था। इस वक्त तक इमाम हुसैन बिन अली और आपके अहले बैत और रफका कई दिनों से करबला में कयाम पज़ीर थे। दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन ज़ियाद मुसलसल अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा था ताकि हज़रत इमाम हुसैन पर बैत के लिए दबाव डाला जा सके। आठ मुहर्रम के बाद दरिया फरात से पानी लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। आठ मुहर्रम को यह मुहासरा मजीद सख्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन के खेमों में मौजूद मर्द, औरतें और बच्चे प्यास की शिद्दत महसूस करने लगे। तारीखी रवायत के मुताबिक दुश्मन की फौज ने फरात के किनारों पर सख्त पहरा बैठा दिया था ताकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले तक पानी न पहुँच सके। इस सूरत हाल ने अहले बैत रसूल की आजमाइश को मजीद बढ़ा दिया था। आठ मुहर्रम तक ओन बिन साद की फौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। मुख्तलिफ इलाकों से सिपाहियों को करबला बुलाया जा रहा था। मतलब यह था कि हज़रत इमाम हुसैन और आपके साथियों को हर तरफ से घेर लिया जाए और उन पर नफसियाती दबाव बढ़ाया जाए। इन दिनों हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार मुखालिफ लश्कर को नसीहत फरमाते थे और आप इन्हें याद दिलाते थे कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और आपका मकसद इक्तदार हासिल करना नहीं बल्कि उम्मत की इस्लाह और हक का क़याम है। हज़रत इमाम हुसैन ने दुश्मन के सामने हुज्जत तमाम की और उन्हें ज़ुल्म व ज़्यादती के नताइज से आगाह किया, लेकिन दुनियावी मफादात और सियासी दबाव की वजह से अक्सर लोग हक को पहचानने के बावजूद इसका साथ ना दे सके। आठ मुहर्रम के दिन अहले बैत इत्तेहार ने इंतहाई सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया। ख्वातीन और बच्चों की प्यास बढ़ती जा रही थी लेकिन किसी के हौसले में कमी नहीं आई। सब जानते थे कि वह हक और सदाकत के रास्ते पर हैं। यही वो अयाम थे जिनमें वफादार साथियों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी वाबस्तगी का अयादा किया और हर कुर्बानी के लिए आमादगी जाहिर की। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत अगर तारीख़ी रवायत के हवाले से देखें तो उसमें मज़कूर है कि अब्बास बिन अली मुसलसल खैमों के इंतज़ाम, अहले बैत की खिदमत और पानी के हसूल की कोशिशों में मसरूफ़ रहे। आपकी शुजात और वफादारी करबला के वाक़ियात का एक रोशन बाब है।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200।
3: जी हाँ, 416-206-3200 राइट विंडो फोर्स के रास्ते का नंबर है। अगर आपके विंडोज पुरानी हो गई हैं, घर के दरवाजे पुराने हो गए हैं, आप रेनोवेशन कर रहे हैं, घर बेचना चाह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो है आपके डोर्स और विंडोज होते हैं, इसको लाजमी चेक करते हैं। जब भी पुराने हों, इंस्पेक्शन जब आती है तो ये ज़रूर जो है वो मामला निकलता है। तो अभी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक ऑफर बता रहे हैं कि आप कुछ पेमेंट ना करें, इंस्टॉलमेंट्स बनवा लें या एक साल के बाद जो है वह पेमेंट कर दें। सुभानु जी हमारे साथ मौजूद होते हैं राइट विंडो फोर्स से। नंबर एक बार फिर नोट करें 416-206-3200। खुश आमदीद कहेंगे सुभानु जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
4: थैंक यू भट्टी साहब।
3: अच्छा, ये एक अक्सर औकात हमने देखा है कि कुछ मिडिल मैन दरमियान में होते हैं, आप तो डायरेक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला रहता है दरमियान में, क्योंकि जब टाइम दिया जाता है वो टाइम पे फिर इंस्टॉलेशन नहीं होती।

0: डेट मुकम्मल हो गई सर कि इस डेट पे होना है तो वो होना है, अनलेस की वेदर का होता है ऑब्वियसली फिनोमिना, वो उसको छोड़ दीजिए, बट उसके अलावा हमने आज तक कोई डेडलाइन नहीं मिस करी।
1: अच्छा, अब ये जो विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं, एक तो कितनी ड्यूरेबल होती हैं, गारंटी वगैरह इसकी होती है कोई?
0: जी, सो ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आती है। और इस जी और इसमें हम ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई आपका ग्लास नहीं है जी, आपका क्रैंक इसमें नहीं होगा, आपका यू नो विंडो के फ्रेम नहीं होंगे, एवरीथिंग हर चीज जो एक एक पार्ट है उसके अंदर, आपको भट्टी साहब जान के हैरानगी होगी कि एक विंडो जो मूविंग विंडो होती है उसको बनाने में 84 पार्ट लगते हैं, 84।
1: अच्छा
0: जी, तो वो सारे 84 पार्ट की वारंटी 25 साल की है।
1: अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अभी कुछ नई नई चीजें आ गई है, कोई डबल ग्लास कहता है, कोई तीन ग्लास कहता है, क्या असल क्या होता है? जनरली यहाँ पे टू ग्लास काफी होते हैं
0: जी। सो जीटीए के एरिया में अगर आप देखें तो -30, -35 का वेदर या +40 वेदर जो है वो जी जाता है, पर क्या उसके लिए आपको वो तीसरा ग्लास डालने की जरूरत है? मेरे मुताबिक तो नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूस दो महीने के लिए पड़ रही है तो आपको ट्रिपल ग्लास की जरूरत पड़े। ये हार्डली 10 दिन का फिनोमिना होता है, और उसके लिए जो क्योंकि हमारी एनर्जी स्टार विंडो ऑलरेडी सर्टिफाइड है तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब।
1: और अगर लेकिन कोई मतलब इसरार करे, इंसिस्ट करे, तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है, फिर आप करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके जो ऑफर्स हैं, आप बहुत से लोग हैं आजकल आपके इल्म है कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग मजबूरन घर बेचना चाह रहे हैं, जाहिर उससे पहले थोड़ा सा रेनोवेट करना चाहते हैं, तो पेमेंट प्लान किस तरह के हैं, किस तरह से वो बाद में दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, थोड़ा सा बताइएगा।
0: तो बटी साहब, दोनों चीजों में अगर बेचना चाह रहे हैं या वो लंबे टाइम के लिए रखना चाह रहे हैं, घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिसकी वजह से वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते और ठंडी हवा, उनको पता है कि विंडोज खराब, कई लोगों को पता ही है कि जी हाँ बिल्कुल खराब हो ही चुकी हैं।
1: जी
0: सो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है जिसके अंदर हम मंथली किस्तों में आपकी सारे घर की विंडोज चेंज कर सकते हैं, जैसे $100, $90, $75, डिपेंड करता है कि आपका घर कितना बड़ा, जैसे टाउन हाउस है नॉर्मली $75 से $80 पर मंथ के हिसाब से हो जाता है।
1: अच्छा, वेरी गुड,
0: आसान किस्तों में
1: सही है, और वो बस आपने इंस्टॉलमेंट जब तक देते रहे। कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप, अच्छा, बाज के बाद फाइनेंसिंग वगैरह लोग करवाना चाह रहे होते हैं, वो भी हो जाती है?
0: जी बिल्कुल, तो मैं उसी के हवाले से बता रहा था कि $79 या $80 पर मंथ के हिसाब से अगर आपने जीरो डाउन देना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमारे पास 2000 भी नहीं है,
1: ठीक है, सही,
0: तो हम वैसी किस्त भी बांध देते हैं आपकी कि जिसमें आप आसानी से पे कर सके,
1: ठीक है। और कुछ में ऐसा भी है कि कुछ अरसा बिल्कुल पे ना करें, इन द एंड जो है वो आपको पे कर दें, ऐसा भी है?
0: जी बिल्कुल,
1: मकान जो है वो बेचने के लिए लगाया होता है, तो चले हो गया पहले इंस्टॉल किया, फिर जब बिक गया तो उसके बाद पैसे दे दिए, ऐसा भी हो सकता है?
0: बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया भट्टी साहब, आपके अगर घर बिकने के लिए लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि यार विंडोज की वजह से रुका, विंडो और रूफ दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से बहुत घर नहीं बिकते हैं,
1: बिल्कुल, ये तो ये भी है, ये प्लान भी अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक। 416-206-3200, 416-206-3200 कॉल कर लीजिए। काम की गारंटी जनाब, मैं खुद भी, क्योंकि मैंने बताया पहले भी 2-3 दफा बता चुका हूँ कि हमने खुद विंडोज जो हैं वो सवानू जी से ही रिप्लेस करवाई थी, तो आप इनसे रब्ता कर लीजिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जो एस्टिमेट देंगे आपको, जितना टाइम देंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे। 416-206-3200 रब्ते के नंबर। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप सवानू जी?
0: बस मैं यही कहना चाहूंगा कि टाइम अभी सही है, गर्म मौसम है, यही टाइम होता है अपने पास 3 से 4 महीने का जिसके अंदर अंदर इंस्टॉलेशन हो जाए। और भट्टी साहब, जो इस समय जो इंस्टॉलेशन होती है वैसी इंस्टॉलेशन हम नवंबर के बाद नहीं कर सकते, बिकॉज कॉकिंग वगैरह, फोम, सब चीजें ड्राई हो जाती है।
1: बिल्कुल ठीक है, नंबर नोट कीजिए, 416-206-3200, 416-206-3200। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मानू जी, फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू, नंबर नोट कर लीजिए, 416-206-3200, 416-206-3200। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, 24 घंटे हमारे नशियात, रेडियो पाकिस्तान .fm सुन सकते हैं, टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 TV। रियल स्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तलाब भट्टी 6472957861। घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए, अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे, जो भी यहाँ प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। तलहा के रबते के नंबर 6472957861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। वक्त हो चला आपको लिए चलने के न्यूज की तरफ, और न्यूज आपके लिए पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
2: You're listening to CMR FM 101.3.
3: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।